0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948

के श्रावण माह की 31वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 अगस्त 2026, दिन बुधवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन, सर्वेंट ऑफ इंडिया। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का है।
1: सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक महामना गोपाल कृष्ण गोखले अपन बाल्यावस्था के संबंध में एक ठाम लिखे छथे। हमर परिवार सदैव आर्थिक विपन्नता अवस्था में रही छल। चतुर्दिक अभावे अभाव कैक दिन एहनो हुई छल जे घर में भानस नहीं हुई, सब केओ भुखले सुत रही छल। एहना स्थिति में पढ़वा खर्च जुटेनाई तो असंभवे छल। पिता की इच्छा रहन जे हम पढ़ी, मुदा द्रव्याभावक कारण वो विवश छलाह। स्कूलक फीस देब आ पुस्तकक दाम देब द्रव्यक अभाव में संभव नहीं छले। तथापि हम जना तना अध्ययन जारी रखलूं। मांग चांग के पुस्तक पढ़ी, मटिया तेल जँ सठ जाइक तो कैक दिन तक लगातार घर में साँझ नहीं पड़ेक। एहना स्थिति में हम नगर निगमक लैम्प पोस्टक नीचा में बैस कर पढ़ल करी। कष्ट सहन आ कठोर परिश्रमक अभ्यास हम बाल्यावस्था से आरंभ कैल आ एहि में प्रेरक भेला परिवारक सदस्य लोकन, विशेष कर हमर पिता। महामना गोखले के आत्मकथा के ई अंश प्रेरणा प्रदत अछि, संगे एक गोट महान सत्यक उद्घाटन सेहो करे छे। ओ ई जे बालक हो कि बालिका, ओकरा भविष्यक लेल तैयार करबा में सर्वाधिक सहयोगी अभिभावके होइ छथि। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयक समय निश्चित रहै छै, सीमित रहै छै। शिक्षकक सान्निध्य ओतबा काल धरि बालक के भेटै छै जतबा काल धरि ओ विद्यालय में रहै छै। जीवनक वास्तविक तैयारी तो करबो पड़ै छै पारिवारिके परिवेश में। जँ बालक के कष्ट सहन करबाक लेल, परिश्रमी आ अध्यवसायी बनबाक लेल, अनिश्चित भविष्यक लेल सक्षम बनेबाक लेल वा एक शब्द में सुयोग्य नागरिक बनेबाक लेल आरंभे से प्रयत्नशील रहल जाए तो निश्चित रूपे वो भविष्य में अनुकरणीय व्यक्तित्व संपन्न नागरिक में परिणत भ सकै छै।
0: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे चिंतन। कृपया अगले कार्यक्रम की कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा, डेयरी उद्यमिता विकास योजना। वाचन स्वर गोपीचंद झा का है।
1: श्रोता लोकन सुप्रभात, आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपीचंद झा। डेयरी उद्यमिता विकास योजना केंद्र सरकार के एक पुरान योजना है, जकरा नाबार्डक माध्यम से चलाओल गेल छल। ए योजना के उद्देश्य आधुनिक डेयरी फार्म खोलने, दूध उत्पादन बढ़ेने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने छल। परंतु मूल योजना बाद में बंद कर देल गेल छल, मुदा पशुपालन और डेयरी विकासक लेल आब एकटा आन ऋण और सब्सिडी योजना उपलब्ध है। योजना के मुख्य उद्देश्य आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित केने, स्वच्छ दूधक उत्पादन बढ़ेने, बाछा के पालन पोषण के बढ़ावा देने, ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न केने, मिले वाला सहायता और सब्सिडी दुधारू पशु यूनिट के गाय या महीस खरीदवा के लिए बैंक लोन, सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए प्रोजेक्ट लागत का 20%, सामान्य वर्ग के लिए प्रोजेक्ट लागत 25% और आरक्षित वर्ग के लिए 33.33% तक पूंजी सब्सिडी का प्रावधान छल। बर्मी कंपोस्ट यूनिट, डेयरी पार्लर और दूध परिवहनक साधन, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगारक अवसर उत्पन्न केने, खरीद संरक्षण परिवहन प्रसंस्करण और दूधक विपणन जेहन गतिविधि के बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना के पूंजीगत सब्सिडी के सहायता प्रदान करवा के लेल डेयरी उद्यमिता विकास योजना के लागू कैल जा रहल है। योजना सुपर मार्केट क्षेत्र में छोटगर फार्म और आन सहायक कंपनी के स्थापना के लिए सहायता के विस्तार करैत अछि। एकर उद्देश्य अछि स्वरोजगारक अवसर पैदा केने और डेयरी क्षेत्रक लेल बुनियादी ढांचा विकसित केने, उच्च गुणवत्ता वाला प्रजनन स्टॉकक विकास और संरक्षणक लेल बछियाक पालन पोषण के प्रोत्साहित केने, दुग्ध उत्पादनक उत्पादन और प्रसंस्करणक माध्यम से दूध के मूल्य वर्धन केने, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला दूधक उत्पादन लेल आधुनिक डेयरी फार्मक स्थापित केने, वाणिज्यिक स्तर पर दूधक हैंडलिंग और प्रोसेसिंग लेल पारंपरिक तकनीक के आधुनिक केने, और किसान जे DES योजना के अंतर्गत ऋण लकर डेयरी इकाई शुरू कर सकते हैं। जे अहाँ का बहुत रास संस्था है वो DES योजना के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग के लिए नाबार्ड ऋण हेतु आवेदन करे के पात्र है। व्यक्तिगत किसान, एकल उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्था, असंगठित क्षेत्र के समूह, असंगठित क्षेत्र के समूह जे में स्वयं सहायता समूह, SHG, दुग्ध सहकारी समिति, दुग्ध संघ, सरकार DES योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करवा के लिए बहुत रास शर्त निर्धारित केने। योजना के प्रत्येक घटक के लिए प्रत्येक संस्था मात्र एक बेर सहायता के लिए आवेदन कर सकी है। परिवार का कई सदस्य का सहायता भेट सकते हैं, बसरते वो स्वतंत्र बुनियादी ढांचा वाला अलग अलग इकाई स्थापित करे जे कम से कम 500 मीटर के दूरी पर स्थित हुए। दैनिक उद्यमिता विकास योजना के लिए जे आवेदक क्षेत्र डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत DES डेयरी ऋण योजना के माध्यम से डेयरी आधारित उद्यम स्थापित करवा या विस्तार करवा के इच्छुक आवेदक का एक विस्तृत श्रृंखला में सहायता प्रदान कैल जाते। किसान वो व्यक्ति जो DES योजना के अंतर्गत डेयरी इकाई शुरू करवा या बढ़ेवा, MSME, दुग्ध उत्पादन प्रसंस्करण या वितरण में लागल छोटगर डेयरी उद्यम जे अपन परिचालनक विस्तार करे के लिए MSME ऋण के तलाश कर रहल छथि, स्वयं सहायता समूह डेयरी उद्यमिता विकास योजना के समर्थन से सामूहिक डेयरी

0: उद्यम स्थापित करे वाला महिला नेतृत्व वाला या सामुदायिक समूह, सहकारी समिति, पंजीकृत डेयरी सहकारी समिति जे DEDS कार्यक्रम के माध्यम से दूध संग्रहण, शीतलन या प्रसंस्करण अवसंरचना में निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर डेयरी ऋण योजना उद्यमता के बढ़ावा देते, ग्रामीण आय में वृद्धि करते और डेयरी क्षेत्र के संगठित विकासक समर्थन करते। डेयरी उद्यमता विकास योजना के लाभ है ग्रामीण उद्यमी के सशक्त बनने। DEDS ग्रामीण युवा और किसान के डेयरी उद्यम के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त केने और अस्थायी आजीविका अर्जित करवा के लेल अवसर प्रदान केने। डेयरिंग फार्मिंग का एक व्यवहार्य व्यवसाय विकल्प रूप में बढ़ावा दे कर ई योजना ग्रामीण सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन में योगदान देते। अहि के संगे आज कृषि चर्चा के समय सम्पन्न होते। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया, नमस्कार।
1: कृषि चर्चा आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रंप ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का

0: बाह्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दरभंगा है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आंखों में चोट लगने पर क्या करें, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह।
3: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे आंख में चोट लगना, इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। डॉक्टर साहब, आंख में चोट लगना या फिर धूल या कुछ ऐसी वस्तु का प्रवेश कर जाना जिससे आंख में न सिर्फ तकलीफ होती है, कई बार आंख की रोशनी तक चली जाती है।
4: जी,
3: सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है धूल।
4: जी,
3: उस पर क्या करें लोग?
4: अगर किसी आंख में अचानक धूल चला गया, आंधी में है या बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के आंख में धूल झोंक दिया
3: जी,
4: तो उसमें पहला उपचार के तौर पर चिकित्सक तो बाद में देखेंगे उसको, कम से कम साफ पानी से उसको जितना आप धो सकते हैं उतना धोइए, आंख रगड़िए मत। क्योंकि जब भी आप आंख को रगड़ेंगे तो धूल कण के से आप आंख को रगड़िएगा तो कॉर्निया डैमेज करेगा, वो छिल जाएगा और अल्सर बना देगा। तो आप जिस स्थिति में वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आइए अगर साफ सुथरा पानी मिलता है उससे धो लीजिए, उसके बाद भी आपको कष्ट रहता है तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप डालिए
3: और फिर डॉक्टर
4: जी फिर डॉक्टर से मिलिए।
3: कुछ लोग लोहे का काम करते हैं,
4: व्यवसाय है,
3: बिल्डर है या बिल्डर का काम करते हैं, तो कई बार चिंगारी
4: स्मिथ वाले हैं, लोहार का काम है,
3: चिंगारी या लोहे का बुरादा या कोई भी कण आंख में अचानक चला जाता है,
4: आंख में अचानक चला जाता है, तो उसके लिए आपको उसमें आंख में अब देखिए अगर बहुत छोटा कण है हो सकता है आंसू के थ्रू भी निकल जाएगा, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंख में कोई कष्ट नहीं है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है, आंख में दर्द नहीं है, आंख को में फोटोफोबिया जिसमें कि सूरज की रोशनी में या जनरल रोशनी में आपका आंख बढ़िया से खुलता है, इसका मतलब है कण उसके अंदर नहीं होगा। जब वो कण कॉर्निया पर लॉज कर जाएगा तो आंख से पानी आएगा, आपको आंख में दर्द रहेगा, आंख को आपको धूप में नहीं खोलने देगा। तो वैसी हालत में आपको उसको कण को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए, और ज़्यादा लेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, तो उसमें डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो वो आप विशेषज्ञ के सलाह से उसको अगर अंदर पड़ा हुआ है तो उसको निकलवाइए और जैसे सलाह दे वो उसी
3: कई बार कुछ ऐसा लिक्विड है जिसका लोग काम करते हैं, केमिकल कह लीजिए या फिर कभी चूना या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, अगर वो आँख में चला जाए तो
4: वो एक उसमें दो चीज है, या तो अचानक आपके आँख के अंदर जैसे आदमी गाड़ी को जो ड्राइवर है वो उठाया उसमें एसिड रहता है वो आँख में चला गया, या फिर पेंटर है जो पेंट कर रहा है दीवार को उसके आँख में चूना चला गया, दोनों आँख के लिए घातक है। और एसिड से ज्यादा घातक चूना है, चूना को लोग कम घातक समझता है बट अल्कली ज्यादा डैमेज करता है, कारण है कि वो जब अंदर जो आँख के अंदर जाता है तो वो उसमें उसको घुला देता है वो, और उसको घुलाता है और सोपनिफिकेशन कहलाता है वो। तो उसको पहला उपचार क्या है कि आप उसमें भी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से आँख को धोइए,
3: साफ
4: एकदम साफ पानी से, जितना 5 लीटर 10 लीटर जितना भी धो सकते हैं, ताकि

0: इसका कहीं पर भी कानून होगा।
1: और डॉक्टर साहब, धोने की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए?
0: बहुत तेज में आंख में छींटा नहीं मारिए, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में एक तरह से, अगर आप ये है, अगर अच्छे से धोना चाहते हैं तो सलाइन में जो आता है आरएल वाला, उसको आईवी सेट से आंख के पास लगा देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: उसको ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में, तो जितना आंख के अंदर जाएगा, जितनी गंदगी हो, तो एस्ट्राल भी है वो, साथ साथ वो पानी भी है,
1: लेकिन पूरी सावधानी।
0: हाँ जी जी, अगर वो उतना उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नल का पानी जो है साफ सुथरा, ट्यूबवेल का पानी, उससे आंख को धोइए।
1: और बच्चे कभी कभी तीर धनुष चलाते हैं, गेंद या फिर कुछ ऐसे खिलौने, उसकी वजह से भी कभी कभी आंख में।
0: जी जी, बच्चे को उससे चीज से, नोकीली चीज से उसको मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वो नोकीला चीज हाथ में ले।
1: पेंसिल
0: ले तो उसका वो उसका उससे भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो उससे लिखने के लिए ठीक है, खेलने का उसको डिस्करेज कीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर आंख में लगने के बाद हो सकता है
1: दुर्घटना कहकर नहीं आती।
0: हाँ जी जी जी, उसमें
1: अगर दुर्घटना
0: हो गई तो फिर उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए।
1: कभी लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं गाड़ी पर और दुर्घटना हो जाती है।
0: देखिए जी,
1: और आँख से थोड़ा खून निकला,
0: हाँ आँख में खून निकला, विजन ठीक है तो चिंता नहीं लिया। देखिए कभी कभार कि आदमी बहुत घबराया हुआ है कि मेरा आँख एकदम लाल हो गया है, मगर पूछिएगा उससे कि आँख तो लाल है, दिखता है ना सब चीज, तो बोलेगा कि नहीं दिखता ठप है, तो उसमें घबराना नहीं है, दैट इज ए सब कंजक्टाइबल हेमरेज। अगर देखिएगा कि आँख उसका लाल नहीं है मगर उसका रोशनी गड़बड़ा गया, इसका मतलब भीतर में उसको गड़बड़ा, या तो विट्रस हेमरेज हो गया, या मैकुला को डैमेज किया, या रेटिनल का डिटैच किया, वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके कि जिस सीधे आंख लाल है उसको दिखता हो।
1: आंख में
0: जी
1: चोट लगे किसी भी प्रकार से, धूल जाए, लोहे का बुरादा जाए, या ज्वलनशील पदार्थ जाए, तीर धनु से लगे, या फिर दुर्घटना में आंख चोटिल हो जाए, अपने विशेषज्ञ से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से
0: एक चीज हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोशिश कीजिए कि ये आपको डैमेज नहीं करे, धूल आपके अंदर आंख में नहीं जाए। जो लोग उस व्यवसाय में वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगाकर काम करे, और बच्चा को आप नोकीली चीज से ये कराइए, उसको डिस्करेज कीजिए। अगर हो जाता है तो उसको प्रॉपर अर्ली स्टेज में उसको दिखलाइए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
1: डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में कुछ शिव भजन।

0: आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान। गायन स्वर सुरेश वाडेकर का है। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने अपना दिव्य दर्शन देते हुए उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया।
1: एपिसोड 15।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ।

रामचरितमानस गान का भी आपने आनंद लिया। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:05 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्रातः 8 सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण करेंगे प्रातः 8:15 पर। खबरनामा सुन पाएंगे आप प्रातः 8:30 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा प्रातः 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:05 पर। प्रातः 9:50 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 10:30 पर सुनिएगा लोकगीत।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे प्रातः 11 बजे। इसके अंतर्गत आज सुनिएगा विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा का वादन, राग देश में और राग सारंग में। NCERT या प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर के 12 बजे। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा महिला श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार। दोपहर के 1 बजे हिंदी समाचार का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। देशभक्त गीत आपको सुनवाएंगे दोपहर के 1:10 पर। कलाकार होंगे महेंद्र कपूर, मुकेश और राजेंद्र मेहता। दोपहर 1:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। दोपहर 2 बजे सुनिएगा हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। इलाकाई खबरें यह आप सुन पाएंगे दोपहर 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना। दोपहर 2:15 पर दोपहर समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 2:30 पर। हमारी पहली सभा के अंत में दोपहर के 3 बजे आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। पहली सभा के आरंभ में संध्या के 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम। संध्या के 5:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। विद्यापति गीत का आप आनंद ले पाएंगे संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद सुनिएगा संध्या 6:25 पर। गांव घर के अंतर्गत घर अंगना कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7 बजे। संध्या 7:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। जिले की हलचल आप सुन पाएंगे संध्या 7:47 पर। संध्या 7:50 पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि के 8

0: राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकम् अपि पारितम्। सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभयपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टि परा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मंद वृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने को तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का विभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह

0: केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने करकटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार।
0: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति, स्वीकार करें मेरे से स्नेह भरा नमस्कार। आशीष जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार प्रतिभा जी, कार्यक्रम का शुरुआत सुविचार से।
0: आज का सुविचार है सुभाषितानि है। कहते हैं पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर तीन ही वास्तविक रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु अज्ञानी जन पत्थर के टुकड़े यानी हीरे जवाहरात को रत्न का नाम दिए हैं।
1: निश्चित गप छे।
0: और इसी के पीछे हर कोई देखते हुएगा कि बहुत ही बेचैन रहते हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक धन संचय करें। देखिए, जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है आशीष जी, किंतु सबसे जो कीमती जो रत्न है इस पृथ्वी पर, जैसा कि इस नीति श्लोक में कहा गया है कि अन्न जल और सुभाषितानि, सबसे सुंदर जो वचन सबके साथ बोलना चाहिए, अन्न की जो महत्व है उसे समझना चाहिए, और जल की बात यदि हम सब करने को बैठ जाएं तो घंटों भी निकल सकता है और कम पड़ जाएगा समय, क्योंकि जल तो इन तीनों में भी सबसे आवश्यक कह सकते हैं कि जल है। तो इन सब चीज़ों पे हम सभी को ध्यान देनी होगी और तभी हम सभी अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को खुशहाल रख सकते हैं।
1: और सबसे पैघ गप छे केना जल के गप केलो हैं, कतौ न कतौ एखन हमरा अहाँ के ध्यान देबाक अछि कि पानि के जे कमी भ रहल अछि ओकरा केना बचाबी हमसब अबे वाला समय के लेल। हमरा सबके पानि के कमी नहीं हुए हमारे सबको अभी वाला पीढ़ी का, तो पर निश्चित तौर पर ध्यान देबाक चाहिए।
0: निश्चित तौर पे, और आने वाले पीढ़ी की बात हम सब किए हैं यानी भविष्य की बात किए हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं पहले इतिहास पे कि क्यों है आज का दिन इतिहास के आईने में खास, यानी 12 अगस्त। तो 12 अगस्त 1877 की बात करें तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले फोनोग्राफ का मॉडल पूरा किया था। वहीं 12 अगस्त 1948 में स्वतंत्र भारत की पुरुष हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को 4-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। युवाओं के मुद्दों और योगदान को सराहने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन हर वर्ष विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के साथ मानव हाथी संघर्ष को कम

0: करने के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि हाथी केवल जंगल का एक विशाल जीव ही नहीं है बल्कि प्रकृति के संतुलन का प्रहरी भी है। वहीं यदि बात करें 12 अगस्त के दिन किनका जन्म हुआ, तो विक्रम साराभाई भारतीय भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, उनका जन्म हुआ था आज के दिन 1919 ईस्वी में। और ज्ञानेंद्र पांडे का जन्म भी आज के दिन 1972 में हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर थे। प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ रॉबिन बनर्जी, इनका जन्म हुआ था 1908 में आज के दिन यानी 12 अगस्त को।
1: तो ये हम सब जानकारी प्राप्त करते रही आज के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। आप कार्यक्रम में आगू बढ़े अपने सबके मैथिली गीत सुनबी।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: सावन का महीना और सुबह सुबह यदि शिव भजन सुनने को मिल जाए तो फिर बात ही कहने क्या। और अब समय हो चला है हालचाल का, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आशीष कुमार सिंह। आइए सुनते हैं हालचाल।
3: धन्यवाद प्रतिभा जी। आजुक हालचालक संग हम आशीष। पटना में आयोजित 38वां बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दरभंगा जिला के पंचोब निवासी रजनीश कुमार चौधरी लगातार तेसर बेर स्वर्ण पदक जीत के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कलत। डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी विभाग के वर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के सुचारू रूप से चलबे के लेल काल्हि खन नई दिल्ली से आयल विशेषज्ञ सबके टीम ओटी असिस्टेंट और टेक्नीशियन सबके प्रशिक्षण दिलखिन। मधुबनी शहर में लगातार बढ़ रहल यातायात के दबाव और जाम के समस्या के नियंत्रित करे के लेल ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था में बदलाव कैलत है। शहर के प्रमुख मार्ग पर वन वे और नो एंट्री व्यवस्था के प्रभावी कैल गेल अछि। एकर अंतर्गत आब शहीद चौक से शंकर चौक धरि भोरे 8 बजे से साँझ में 8 बजे धरि वन वे यातायात व्यवस्था लागू रहत। एहि क्रम में शहीद चौक से शंकर चौक के दिस जाय वाला वाहन जा सके छथि, मुदा शंकर चौक से शहीद चौक के दिस वाहन सबके अभी पर पूर्ण रूप से रोक रहत। सीतामढ़ी में जिला में पुलिसिंग के और धार दे के लेल एसपी 5 पुलिस पदाधिकारी के जिम्मेदारी बदल देने छलखिन हैं। लंबा समय से पुलिस केंद्र में तैनात पदाधिकारी सबके अब थाना में पठा के अनुसंधान के जिम्मेदारी सौंपल गलन है। ओतहि सोनवर्षा थाना में तैनात दरोगा के जिला सूचना इकाई में पठाओल गलन है। जीविका दीदी सबके हुनर से दरभंगा जिला में तिरंगा तैयार भ रहल अछि। जिला में लगभग 76,000 तिरंगा तैयार करे के लक्ष्य राखल गेल अछि। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत काल्हि खन कोतवाली थाना स्थित बिजली विभाग परिसर में सोलर सह

0: सोलर बैंक लोन मेला का आयोजन कयल गेल। मेला में वेंडर सब रूफटॉप सोलर पैनल के प्रदर्शनी सेहो लगौलत और सोलर ऋण दै वाला में आगू रहे वाला बैंक सब के में 6 उत्कृष्ट वेंडर के जिलाधिकारी प्रशस्ति पत्र द के सम्मानित सेहो कलखिन। सरकार 3 किलोवाट तक अधिकतम 78,000 रुपया के सब्सिडी द रहा है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवे में लगभग 2 लाख रुपया के खर्च अबैत है। दरभंगा एयरपोर्ट के नवका टर्मिनल के काज तेज भ रहल गेल अछि। 71% से बेसी निर्माण काज पूरा भ चुकल अछि। 642.43 करोड़ के लागत से बन रहल 62,800 वर्ग मीटर में ये अत्याधुनिक टर्मिनल 5 सितारा ग्रीन रेटिंग वाला ग्रीन टर्मिनल अछि। एहिमें नवका टर्मिनल में यात्री सबके सुविधा के लेल 5 एरो ब्रिज और 40 चेक इन काउंटर के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। एरो ब्रिज के सुविधा होय से यात्री सबके विमान से टर्मिनल भवन तक पहुँचे में बेसी सुविधा भ जतन। ओते बेसी संख्या में चेक इन काउंटर रहे से पीक समय में यात्री सबके आवाजाही और चेक इन प्रक्रिया के करे में आसानी रहतन। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
0: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। मिथिला क्षेत्र में कौशल विकास का हब बनौताब और एहि के लेल दरभंगा में 241 करोड़ से आईटीआई के बनाओल जा रहल अछि हाईटेक। मिथिला क्षेत्र के युवा सब के कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में नीक पहल भेल अछि। केंद्र सरकार पीएम सेतु योजना के अंतर्गत दरभंगा के क्लस्टर के रूप में चयनित कयलथि है। योजना के अंतर्गत दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के रामनगर आईटीआई और बेनीपुर सरकारी आईटीआई के आधुनिक सुविधा से लेस कऽ के विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित कयल जायत। एहि के लेल 241 करोड़ रुपया के मंजूरी द देल गेल अछि। बैरल कटाई गाम के शाहिद राजा बनलत असिस्टेंट कमांडेंट। हिंकर पिता दस्ताना बनबै छथिन और ई यूपीएससी में सीएपीएफ में 161वां रैंक हासिल कलत है। आपदा के समय में घबराई के बजाय ओकरा सही तरीका से बचाव और प्राथमिक उपचार केना कयल जाय, एहिके बारे में एखन जानकारी उपलब्ध कराएल जा रहल अछि और एहिसँ बहुत रास जिंदगी के बचाओल जा सकैत अछि। और इएह उद्देश्य सँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चलि रहल युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्रा सबके आपदा से निपटे के लेल व्यवहारिक तरीका सिखाएल जा रहल छन्। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के सौजन्य से एनएसएस कोषांग के दिस सँ आयोजित शिविर में 200 स्वयंसेवक प्रशिक्षण लऽ रहल छथि। दरभंगा में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी काल्हि खन पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में जिला के सबटा थाना के पीसी प्रभारी सह आईटी प्रभारी सबके संगे एकटा समीक्षात्मक बैसार कलथि। बैसार में पुलिसिंग व्यवस्था के और बेसी प्रभावी बनबे के संग संग ऑनलाइन रिकॉर्ड आ तकनीकी कार्य के समयबद्ध तरीका से पूर्ण करे के लेल बहुत रास दिशा निर्देश दलत। एहि बैसार में एसएसपी माननीय न्यायालय से प्राप्त सबटा आदेशिका सबके ससमय तामील सुनिश्चित करे के लेल न्यायालय से प्राप्त कांड दैनिक के मांग के निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करबे के सेहो निर्देश।

0: ثلاث बहरजात पाबनि के लेल पंचगछिया गाम में तैयारी जोर शोर से भ रहल अछि। मंडली गाम में घूम के लोक सब से सहयोग ल रहल छथि। ससिया महाराज के पूजा के पुरान परंपरा अछि, जाहि में सबटा समुदाय के लोग सहयोग करै छथि। धानक रोपाई के बाद ई पाबनि होइत अछि। सुपौल में जिलाधिकारी के निर्देश पर आई बुध से तिरंगा अभियान शुरू कयल जायत। आई बलवा, बसबिट्टी आ बरुआरी पंचायत में अभियान के शुरुआत हैत। पंचायत स्तर पर एहि के लेल कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। लोखी गाम में पंचायत समिति के बैसार भेल। अंदराठाड़ी प्रखंड कार्यालय में पंचायत सचिव, अकाउंटेंट आ अभियंता सबके बैसार भेल। योजना सबके समीक्षा कयल गेल। सिंघिया में 18 अगस्त के बंगरहट्टा आ वाड़ी पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन हैत। ई आयोजन पंचायत, सरकार भवन आ मध्य विद्यालय वाड़ी में हैत। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है, ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं, तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
4: हालचाल के बाद आपका स्वागत है अपने कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति
0: और कार्यक्रम में आशीष। आ कार्यक्रम में बेरा बेरी के सब किछ के समेटत आबि रहल छी, तऽ जखन जानकारी प्राप्त कर रहल छी तऽ किया नहि मौसम संबंधी सेहो जानकारी प्राप्त कऽ लेल जाय।
4: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 12 से 16 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना कम है। हालांकि मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के जिलों में अनेक स्थानों पर 15 से 16 अगस्त को अच्छी वर्षा हो सकती है। बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सिवान एवं सारण जिलों में 15 से 16 अगस्त के आसपास वर्षा होने की संभावना है। इसके पहले इन जिलों में एक दो स्थानों को छोड़कर आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर में 45 से 55% के बीच रहने की संभावना है। वहीं इस दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
0: तो ये खेन हम सब अहाँके मौसम के जानकारी प्राप्त करते रही। और अगर लोकल अपडेट्स के गप करी तो आई दरभंगा शहर में 11 KV लाइन और ट्रांसफर शिफ्टिंग के कार्य के कारण अलग अलग क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहत। एखन धरि बहुत ठाम भोरे 6 बजे से बिजली कटल है, जे 8 बजे धरि बिजली आपूर्ति नहीं रहत। एहिमे दोनार चौक, अललपट्टी सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली प्रभावित रहत। और आई विशेष व्याख्यान अछि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में, समय 11 बजे दिन से।
4: और ये थे कुछ लोकल जानकारियां जो हमारे आसपास में आज के दिन क्या कुछ खास होने वाला है। आशीष जी, अपने इस कार्यक्रम नमस्कार मिथिला की यही तो विशेषता है कि हम सभी इसमें अवगत करवाते हैं अपने आसपास के खबरों से अपने श्रोताओं को, साथ ही मैथिली गीत तो सुनवाते ही हैं, सुनवा चुके हैं, और मनोरंजित करवाते हैं उन्हें फिल्म संगीत से भी। साथ में करते हैं हम सभी कुछ बातचीत। और आज आशीष जी बुधवार है, तो बुधवार को हम सभी लेके आते हैं अपने साप्ताहिक गतिविधियां, जिसे कहते हैं हम सभी मिथिला की आवाज़ के रूप में।

0: तो क्यों ना मिथिला की आवाज प्रस्तुत किया जाए सबसे पहले।
1: नमस्कार, मैं आशीष और आकाशवाणी दरभंगा से नमस्कार मिथिला के अंतर्गत आप सुनते हैं मिथिला की आवाज। और आज बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद की बात की शुरुआत करते हैं मिथिलेश जी के साथ। जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
2: मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार बैठा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जीवन है। आयुर्वेद जो है हमारा जीवन मूल है। यदि आयुर्वेद ही जो है जिससे के माध्यम से हम स्वस्थ रहने की कला है, ये आयुर्वेद जो है में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, बहुत सारी चीज़ों का स्वास्थ्य का वर्णन किया गया है, जिससे कि जो है आयुर्वेद के माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। बाकी औषधि के रूप में भी आयुर्वेद जो है बहुत

0: ही जो है जिससे के माध्यम से हम स्वस्थ रहने की कला है ये। आयुर्वेद जो है में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या बहुत सारी चीज़ों का स्वास्थ्य का वर्णन किया गया है जिससे कि जो है आयुर्वेद के माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। बाकी औषधि के रूप में भी आयुर्वेद जो है बहुत बृहद विशाल भंडार है। रस औषधि हो, पंचकर्म संशोधन चिकित्सा है आयुर्वेद में, पंचकर्म के माध्यम से संसमन चिकित्सा के माध्यम से हम लोग जो है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट भी देते हैं। ये चिकित्सा पद्धति के साथ साथ जीवन पद्धति भी है आयुर्वेद।
1: विश्व आयुर्वेद दिवस की अगर बात करें तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: ये विश्व आयुर्वेद आयुर्वेदा डे आयुर्वेद दिवस हम लोग पूर्व में धन्वंतरी जयंती, जो भगवान धन्वंतरी का जन्म है उस दिन, उस रूप में मनाते थे। धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते थे आयुर्वेद दिवस को, और उस दिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ उस दिन भी मनाते थे। उस दिन भगवान धन्वंतरी जयंती का पूजा करते थे, और वो चीज़ जो है सो सीमित क्षेत्र में ही हो पाता था। और धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन पड़ता था या उससे एक दिन आगे पीछे, वो बहुत ही डेट बहुत ही वो होता था, फ्लैक्चुएट होता था। तो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि ये जो उस टाइम का पीरियड वगैरह होता है तो काफ़ी हैक्टिक होता है, काफ़ी परेशानी भरा होता है, आदमी जो है सो अपने कामों में ही उलझ जाता है दीपावली के कामों में। तो बहुत सारा हमारा आयुर्वेद जो है ग्लोबलाइजेशन लेवल पे इसका जो है मैसेज नहीं जा पाता है। हम देना चाहते हैं बट हम अपने में ही सीमित रह जाते हैं। तो एक डेट इसीलिए आयुर्वेदा डे के रूप में 23 सितंबर को चुना गया कि ये एक डेट रहेगा तो हम पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, इसका गुण धर्म के बारे में सारी चीज़ों को लाभ लेने के लिए बता सकते हैं। तो इसीलिए एक टेंटेटिव डेट 23 सितंबर का डेट निर्धारित किया गया, जिससे कि हम हर साल जो है आयुर्वेदा डे इस दिन मनाएंगे। और हर साल का थीम अलग अलग होगा आयुर्वेदा डे का, ठीक है। इस बार जो है 2025 का थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, मतलब आयुर्वेद जो है पीपल्स के लिए है, मनुष्य के लिए है, और हमारी जो धरती माता है उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। दोनों एक दूसरे का मतलब सामंजस्य है, हाँ, पूरक है। उसको बहुत डिटेल में हम लोग जानने के लिए बहुत समय लगेगा। तो ये है आयुर्वेदा डे हमारा।
1: आयुर्वेद में इलाज किस तरीके से किया जाता है, किन बातों पर ध्यान दिया जाता है?
0: देखिए आयुर्वेद में बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। त्रिदोष है, सप्त धातु है, हाँ, 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, हमारा शरीर है, मन है, आत्मा है। इस सभी शरीर और मन दोनों को हम तारतम्य में बैठा करके स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में पहले भी बताया जा चुका है, हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्य, हमारे ऋषि चरक, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विद्यते। स्वस्थ की परिभाषा दिया गया है कि हेल्दी कैसे हम रह सकते हैं। तो शरीर और मन, धातु, अग्नि, मल, सब हमारा सम्य अवस्था में होगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसकी चिकित्सा का बहुत वर्सेटाइल रेंज है। अष्टांग हृदय है हमारे पास, बहुत सारा पंचकर्म चिकित्सा है, संसमन चिकित्सा है, संशोधन चिकित्सा है। तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है इसमें। सर्जरी था, अभी है, हम लोग 400 सर्जरी भी करते हैं, फिशुलाई नैनो पाइल्स की सर्जरी हमारे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कई प्रकार की सर्जरी और भी ऐड हो रहा है। तो हर तरह की चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में संभव था, है, और इसको और उन्नत बनाने की हमको ज़रूरत है।
1: और आम आदमी जो खास करके आयुर्वेद कहीं ना कहीं लोगों के जीवन का एक हिस्सा भी बन चुका है, तो उस आयुर्वेद को किस तरीके से अपने जीवन का और आगे हिस्सा बने ताकि वो स्वस्थ रह सके?
0: बिल्कुल, हमारा आयुर्वेद सदियों से हमारा हिस्सा है। हम जितनी भी मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, जरी वो मसाला घर के क्या है, हल्दी खाते हैं, वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है प्रचुर मात्रा में, एंटी इन्फेक्टिव है, वो हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। हम दूध में मिला के पीते हैं तो हमारी सर्दी खांसी ठीक हो जाती थी, दादी माँ वगैरह देती थी। तुलसी का पत्ता मध में मिला करके रस निकाल करके देती थी, हम सर्दी ठीक। रस पिपरी हम लोग बचपन में खाए हुए हैं, ठीक है। बहुत वर्सेटाइल चीज़ है, आप कदम कदम पे देखेंगे, दायां बायां देखेंगे, हर चीज़ हम आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। बचपन से लेकर के मृत्यु सैया तक जो है आयुर्वेद के बिना जीवन अधूरा है, यही समझ लीजिए। आयुर्वेद में हर कुछ हमारा निहित है, मतलब मेडिसिन के रूप में हो, जीवन जीने के कला के रूप में हो। हम यदि रात में, आज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि नाइट ड्यूटी शिफ्ट में होता है, नाइट ड्यूटी हम करते हैं, रात रात भर जगते हैं, जबकि रात्रिचर्या बताया गया है, दिनचर्या बताया, कौन

0: काम दिन में करना है, कौन काम रात में करना है, कैसे करना है, सब चीज की व्याख्या है और सबकी दुरुपयोग होने पर उसका रोग का भी वर्णन है। तो यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमको पूर्व का जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जितना भी सिद्धांत है, थ्योरी है, उस थ्योरी की ओर लौटना ही होगा, तभी हम जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।
1: कुल मिलाकर के देखें तो आयुर्वेद जो है स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है।
0: कला के साथ साथ यदि नहीं वो को अपनाएं तो हम रोग की ओर बढ़ेंगे। लाइफ स्टाइल नहीं चेंज किए तो आज के डेट में बच्चा मोटापा की ओर, मोटापा भी एक थीम है हमारा, स्वस्थ नारी मोटापा, ये सब थीम है भारत सरकार का, तो यही जागरूकता का है। यदि नहीं हम अपनाएंगे आयुर्वेद को तो फास्ट फूड खाएंगे, भारी सामान खाएंगे तो हम ज़्यादा ओबेसिटी में चले जाएंगे, हमारा देह तो फूल जाएगा लेकिन हमारे शरीर में जो है वो ऊर्जा नहीं रहेगा। मोटापा बीमारी है, स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए जो है हमको आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उसी के लिए हम लोग हैं। हम लोग से सब कोई लाभ ले सकते हैं दरभंगा वासी आकर के। ये मैसेज हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप खूब प्रचार प्रसार कीजिए कि हमारे यहाँ आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल है जो जीवित अवस्था में है और पूरी विकसित होने के कगार पे है, तो इसका लाभ लेने के लिए जो है सो जन जन तक पहुँचाया जाए।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी हम लोग सुन रहे थे मिथिला की आवाज़। आयुर्वेद के महत्व के विषय में हम सभी ने जाना। आयुर्वेद तो बहुत ही प्राचीन, जो कह सकते हैं कि रोग उपचार का साधन है, तो इसकी जो महत्व है, महत्ता को हम सभी जाने और इस पे विश्वास सबसे पहले बड़ी बात है आशीष जी, कि किसी भी पद्धति पे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर कोई भी होम्योपैथ हो या कोई भी पैथ हो, तो आपको विश्वास सबसे पहले करनी होती है और तब यदि इस आप आगे बढ़ते हैं तो इसकी महत्ता को समझ पाते हैं और लाभान्वित भी हो पाते हैं।
1: ते दुआरे हमर सबके तो जीवन में हम सब जे खेनाई खाई छी, जे जेना एखन गप कही छलत कि मसाला खाई छी, कतौ न कतौ ओ सबटा आयुर्वेद से जुड़ल अछि। तो हमर अहाँके की छै जे पूर्वज शुरू से अपन सबके जे आहार व्यवहार दुनू जे बनेने छथि ओ
2: बिल्कुल
1: अहाँके प्रकृति से जुड़ल और आयुर्वेद प्रकृति से जुड़े के एकटा अहाँके माध्यम अछि। ताहि दुआरे हम अहाँ अपन जे पुरान संस्कृति अछि, पुरान व्यवहार अछि, पुरान आहार अछि, ओकरा सामंजस्य करैत आगू बढ़ी तऽ सफलो रहब और स्वस्थो रहब
2: निश्चित तौर पर। और स्वस्थ रहने के लिए मानसिकता भी स्वस्थ रखनी होगी, स्वच्छ रखनी होगी और इसके लिए गीत संगीत बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन में। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को एक फिल्म संगीत का आनंद दिलवाएं, फिर करेंगे हम सभी बातचीत।

0: बहुत ही प्यारा संगीत, और गीत ही नहीं, इसमें बहुत कुछ संदेश है आशीष जी, हमारे लिए, हमारे जो देश के युवा वर्ग हैं उनके लिए, कि कितनी कठिनाइयों से हम सभी ने इस आज़ादी को पाया है, तो इसे किस तरह से हम सभी बना के चलें, इसे इसमें हम लोग जिए, आज़ाद भारत में जीते रहें, और इसमें युवाओं की जो योगदान है उसे हम सभी सतत याद रखें।
1: और अपन जे सपना होइ छन सब युवा का, वो सपना पूरा करे के दिशा में आगू बढ़ी, क्योंकि सपना सबके हर घर में रहे छन, ककरो किछ बेटा डॉक्टर बने ले चाहे छथिन, तो ककरो बेटी यहाँ के किछ फैशन डिजाइनर बने ले चाहे छथिन, कहीं मुदा बहुत बेर एहन होते है कि बहुत रास सपना बीचे रास्ता में खत्म भ जाते है, वजह अगर देखबे तो ओकर कारण देखबे तो सपना के कमी नहीं है बल्कि दिशा नहीं भेट पावे छन।
0: बिल्कुल सही दिशा में उन्हें बढ़ने की जो राह कह सकते हैं वो नहीं मिल पाता है। कितना बड़ा होता है कि आप जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको वहाँ की रास्ता की राह की जानकारी नहीं है, तो फिर आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और
1: सबसे पहले गप होते है कि बनबाक है, ऐसे पहले हम की छी ई बुझनाई बहुत बेसी जरूरी है, कहे बहुत बेर एहन हो माँ बाप रहे छे अपना से तो आप बदलल है, नहीं तो पहले जतेक गार्जियन छलत तिनकर मन में यह खाली रहे छलन हमर बच्चा चाहे इंजीनियर बने बा डॉक्टर बने।
0: हाँ ऐसे भी छोटे बच्चों को पूछा जाता क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके, तो हाँ, डॉक्टर इंजीनियर यही कहते थे।
1: हाँ तो कतौ न कतौ दिमाग में बैस गेल छल, मुदा आप कैरियर के बहुत रास आयाम सब खुजि रहल अछि और लोग बुझि रहल छथि, तै दिशा में लोग आगू बढ़ियो रहल छथि, तै दुआरे युवा के सबसे पहले अपने आप से पूछबाक चाहिए कि हमर ताकत की अछि, अगर हमरा लिखनाई पसंद अछि या हमरा बजनाई पसंद अछि या हमरा कंप्यूटर पसंद अछि, ई अहाँ के अपने बुझऽ पड़त।
0: बिल्कुल
1: अगर अहाँ केकरो नकल कऽ के कोनो दोस्त कोनो काज कऽ रहल छथि, कोनो कैरियर के दिशा में आगू बढ़ि रहल छथि, अहूँ ओ काज करब तऽ दू साल बाद ओ बोझ बनि जायत, तै दुआरे अपन रुचि जे अछि तकरा चिन्ह के तकर बाद अगर आगू बढ़ब तऽ अहाँ सफल हेबे करब।

0: निश्चित तौर पर वो कविता आपने भी पढ़ी होगी कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। तो जीवन में आगे बढ़ने से पहले सही दिशा और मार्ग की जो पहचान है वो बहुत ही आवश्यक है पहचान करने की, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने की पहली यही शर्त कह सकते हैं कि होती है। और युवा की यदि बात करते हैं, युवा के सपनों की यदि बात करते हैं, तो आज का युवा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नए अवसर पैदा करने वाले उद्यमी जो है वैज्ञानिक और समाज को दिशा देने वाला नेतृत्वकर्ता बनकर देश के विकास में भागीदार बन सकता है और देश को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाए रख सकता है। इसके लिए आवश्यक है आशीष जी कि युवाओं की शक्ति को सही दिशा दी जाए, जो कि शिक्षा के साथ साथ कौशल, संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच से संभव हो सकता है। जिस देश का आशीष जी युवा जागरूक होता है, शिक्षित होता है, कुशल और जिम्मेदार होगा, उस देश का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होता है।
1: निश्चित तौर पर बहुत नीक गप अपने एखन कहलहुँ हैं कि एखुनका समय में डिग्री के संग संग हुनर जरूरी है,
0: बहुत आवश्यक है। बिल्कुल,
1: खाली मार्कशीट से आप नौकरी नहीं भेट सकते हैं, कंपनी कतो देखे छे हुनर देखे छे, एकटा स्किल सीख लिया
0: बिल्कुल
1: जिसमें
0: आपकी रुचि हो, हाँ
1: हाँ, जैसे अहाँ आगू बढ़ सके छे। जखन धरि अहाँ के डिग्री और स्किल दुनू के अहाँ में रहत तखने अहाँ आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आज हम सभी बात किए कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके निर्णय निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के माध्यम से यह संदेश भी दिया जाता है कि युवाओं में नेतृत्व, नवाचार और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाए, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में युवाओं की सक्रिय भूमिका हो। तो फिर ये युवा वर्ग पुरुष हो अथवा महिला, कोई भी हो, दोनों ही के को समान रूप से समान अवसर मिलना चाहिए। और आजकल तो मिल भी रहा है आशीष जी, आज के युग में जो माता पिता हैं वो इन बातों को पीछे छोड़ चुके हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं कि बेटे हैं तो बहुत दूर हम इन्हें भेजेंगे पढ़ने के लिए या जो जिस क्षेत्र में इनकी रुचि है, और बेटियां हैं तो नहीं जा सकती है, पहले की बात अब नहीं रही है। तो समानता कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हम सभी ला चुके हैं।
1: और संगे संगे अब युवा के चाहिए कि वो जखन समानता आ चुकल है तो अपन असफलता से डरत नहीं, सीख लत, अहाँ के अगर सफल इंसान के अहाँ खिस्सा सब देखबन तब वो अहाँ के 10 बेर असफल भेलत, मुदा 11वां बेर में वो सफल निश्चित भेलत
0: निश्चित तौर पर।
1: और जे युवा अहाँ के खसि के फिर उठनाए सीख जाए छथि हुनका दुनिया नहीं रोक सकै छन। और कै बेर एहनो होइत अछि कि हम अहाँ सोच लै छी पहले 1 करोड़ के सेटअप भऽ जाए तखन ई काज शुरू करब, तऽ न किछु राधा के न मोन घी हेतन न राजा नचतत, सएह वला गप भऽ जाइत अछि, एकटा कहावत अछि अपना सब, तऽ ताहि दुआरे अपन किछु छोट से शुरुआत करू ना, अपन अहाँ मोबाइल से अहाँ शुरुआत कऽ सकै छी, 1 करोड़ के बदला अहाँ के किछु 500 के सामान से शुरू करू।
0: बिल्कुल, घर बैठे बहुत कुछ ऐसे है, ऐसे रोजगार हैं जो आप कर सकते हैं। और आपने बहुत ही बड़ी बात कही है कि छोटे तबके से आप काम को शुरू कीजिए, आपके पास 5,000-10,000 की पूंजी है तो वहीं से आप शुरू तो कीजिए। पहले हम सभी पेड़ लगाते हैं, उसे जल से सिंचित करते हैं, तभी तो वो बड़ा वृक्ष बनता है और फिर फलदार वृक्ष बनता है जिसका फल हम सभी उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, या फिर छाया से हम सभी आनंदित होते हैं। तो पहले तो जमीन में छोटा सा एक पौधा लगाना पड़ता है। तो छोटे स्तर से आप अपने काम को शुरू कीजिए, और यदि हम सभी इन बातों को ध्यान में रख के और ये काम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे हम सभी सफल हो पाते हैं। और यही हमारी सोच भी होनी चाहिए आशीष जी कि हम सब कैसे आगे बढ़ें, और ख़ास करके युवा वर्ग। कहते हैं कि देश के किसी भी परिवार के जिम्मेदारी युवा के कंधों पर होती है, तो हमारे देश की भी या कोई भी देश हो उसकी जो कह सकते हैं विकास की जिम्मेदारी युवा वर्ग के कंधों पर है, तो उन्हें इस तरह से आगे आना ही होगा। और हम बात करें यदि स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन देकर युवाओं को नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाली उद्यमी बनने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। यहाँ एक बात आती है आशीष जी, करियर मार्गदर्शन, तो उनकी रुचि और क्षमता चुनने में सहायता करनी होगी। खेल एवं रचनात्मक जो गतिविधियाँ हैं, जैसे विभिन्न खेलों के साथ कला, साहित्य और संस्कृति माध्यम से उनके प्रतिभा को अवसर देना होगा, तभी युवा सशक्त बनेंगे, बेटो हो या बेटी कोई भी।

0: तखन आगू बढ़ैके लेल हमरा अहाँके किछु युवाके अपन जे कौशल छनि जे हुनकर अन्दरके भीतरके जे अहाँके किछु शक्ति अछि तकरा अगर
1: चिन्हल
0: बढ़त तऽ निश्चित तौरपर सफल होयत आओर कार्यक्रममे किछु सफल होइके लेल सभ चीजके समेटके आनऽ पड़ैत अछि तऽ इएह क्रममे किछु आब किछु समसामयिक घटनाके सेहो चर्चा कऽ ली तऽ तकनीकी कारणसँ आब कोनो सरकारी मदद आओर शिकायतके समयपर नहि रुकबाक चाही आओर शिकायत जे छै समयपर समाधान भऽ जाए ई के छै सी एम अहाँके सम्राट चौधरी कहलत है आओर टोल प्लाजाके लग रहैवला आदमी सभके आब 3,000 रुपैआमे वार्षिक पास लऽ सकै छथि जाहिसँ कि हुनका बेर बेर टोल नहि दिअ पड़तनि तऽ ई एकटा गप कयल गेल हँ
1: और फिर कार्यक्रम में जानकारी के साथ मनोरंजन यदि हम सभी समय समय पर करवाते हैं तो फिर इसकी गुणवत्ता को हम सभी इसकी आनंद उठा पाते हैं। तो चलते चलते फिल्म संगीत का आनंद लेते हैं क्योंकि अब समय बहुत देर हम सभी को बात करने की इजाज़त दे नहीं रही है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, तो ये तभी अच्छे लगेंगे जब हम इनकी संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। और चलते चलते एक बात कहना चाहेंगे हम सभी अपने श्रोताओं से भी कि एक एक वृक्ष निश्चित रूप से

0: नमस्कार मिथिला, ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
4: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
4: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
7: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
8: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
1: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा

0: विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड

0: बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे से मुत्तसिल बुलवार्ड रोड पर आज अजीम तिरंगा यात्रा निकाली गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रैली की क्यादत की, जिसमें हजारों तलबा, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी अहलकारों और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के उम्मीदवारों का एहतजाज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। रांची में देर रात जिला इंतजामिया एहतजाजी मुजाहरे की जगह पर पहुंचने के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तलबा ने कल शाम खामोश मार्च निकाला और कहा कि ये मार्च पुरअमन और जमहूरी तरीके से उनके मुतालबात को उठाने के लिए था। बाद अजा जिला इंतजामिया के अफसरान की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एहतजाज कर रहे तलबा के पास पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे तलबा से बात की। तलबा रहनुमा ने कहा कि इंतजामिया ने कोर कमेटी के मेम्बरान की तफसीलात मांगी हैं और यकीन दहानी कराई कि वो इस अमल में ताउन कर रहे हैं। तलबा लीडर देवेंद्र नाथ महतो मुसलसल 10वें दिन भूख हड़ताल पर हैं और उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में बीजेपी रहनुमा, जिनमें रियासती जनरल सेक्रेटरी अमर कुमार बौरी और रियासत के नायब सदर भानु प्रताप शाही एहतजाज के मकाम पर पहुंचे और तलबा के लिए हिमायत का इजहार किया। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में कल रात आग लगने के हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और चार दीगर जख्मी हो गए। इंतजामिया के मुताबिक ये आग विले पार्ले वेस्ट में वाकई 12वीं मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को रात 10 बजे के करीब वाकई की इत्तला मिली। बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर खिदमात को फौरी तौर पर बरूए कार लाया गया। देर रात लगभग 12:25 पर आग पर काबू पाया गया। मजीद जांच जारी है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों से कल मुजाहिरों का इनेकाद करने की अपील की है। इस तरह इन मुजाहिरों को बैन अल-अक़वामी अहमियत हासिल हो गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों और सिफारती मिशनों के बाहर मुजाहिरों का इनेकाद करने का मंसूबा है ताकि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल की जानिब बड़े पैमाने पर तवज्जो मबजूल कराई जा सके। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो खित्ते में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ बैन अल-अक़वामी तवज्जो रागिब करने के लिए रैलियों का भी इनेकाद करे। अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ऐलान किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आजादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। केरलम के मुख्तलिफ मंदिरों में आज आबाओ अजदाद को खिराज अकीदत पेश करने से मुतालिक रिवायती रस्म करक्की डाका वावू बली अदा की जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: केरलम में आज सुबह करक्की डाका वायुबाली की रस्म शुरू हो गई है। बीस्तर मंदिरों में ये रसूमात सुबह 3:30 और 5 के दरमियान शुरू हुई। मलयालम माह करक्की डाका नए चांद के दिन को मरहूमीन के लिए रसूमात अदा करने के लिए हिंदू रिवायत में इंतहाई मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है। मुख्तलिफ देवास वोम बोर्ड्स और मंदिरों ने अकीदतमंदों के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। बारिश के मद्देनजर नदियों के किनारों और साहिली इलाकों में सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। अनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों, सिक्किम, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, मशरकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार जजायर में अगले 2-3 के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कल तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की लगातार बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ने का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थरों के गिरने की वजह से आमो दरख्त मुतासिर है और लोगों को बिजली और पानी फराहमी

0: में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अगले 12 घंटे के दौरान शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर मकामात पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। मंडी में जिला इंतजामिया ने मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर गिरने के खतरे के पेश नजर मंडी और कुल्लू के दरमियान कौमी शाहरा 21 और मंडी और जोगिंदर नगर के दरमियान कौमी शाहरा 154 पर कल रात से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा रियासत की दीगर 204 सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिमला के महकमे मौसमियात ने 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें और मकामी इंतजामिया की जानिब से वक्तन फौक्तन जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इधर ओडिशा में एक बार फिर दूर दराज के मकामात तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के ज्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की है, हालांकि इक्का दुक्का मकामात पर कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। महकमे ने आज अंगुल और क्यूंझार अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और संबलपुर समेत दीगर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ऊंची लहरें उठने के मद्देनजर चौकस रहें। ज़िरात और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में हरियाली अमावस्या के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में जनाब चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े हजारों कारकुन भी उनकी अपील पर अपने अपने गाँवों और शहरों में इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का इज्तिमाई अहद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 19 रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कैंसर को काबिल इत्तला मर्ज करार देने पर गौर करें, ताकि मर्ज का जल्द पता लगाया जा सके और मरीजों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कल ये हिदायत जारी की। अदालत को बताया गया था कि 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में से 17 ने पार्लियामानी कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद पहले ही काबिल इत्तला बीमारी के तौर पर कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। मरकज ने अदालत को बताया कि सेहत रियासत का मौजू है और वाजे किया कि 17 रियासतों ने पहले ही कैंसर को नोटिफाई कर दिया है। नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की तमगे जीतने वाली मुतासिर गुण कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। मर्दों के सीनियर मुकाबलों में कल रात भारत के करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने मुल्क के लिए सोने के तमगे जीते। वहीं मर्दों के सीनियर फॉइल मुकाबले में भारत के तलवारबाज तेजस पाटिल ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांस्य का तमगा जीता। इधर खवातीन भारतीय तलवारबाजों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन के सीनियर एपी मुकाबले में 3 तमगे जीते। इनमें तनिषा खत्री का सोने का तमगा और उनकी हमवतन खुशी दाभाड़े का चांदी का तमगा शामिल है। ये तीन खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के लिए मुंतखब किया है। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरे संघर्ष का इजरा करेंगे। इसी अखबार ने दिल्ली असेंबली में कौमी गीत वंदे मातरम गूंजने और वजीर आला रेखा गुप्ता और मेम्बरान असेंबली के तिरंगा लिए हुए असेंबली पहुंचने को बड़ी खबर बनाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानून और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुदनविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.5

0: मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए ये आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां और उनका समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 12 अगस्त 2026 यानी आज दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-4541-651। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें 0612-4541-651। रिकॉर्डिंग की तारीख 12 अगस्त 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
2: और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
3: तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस एफ के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस एफ और थोड़ा कम है ना। सिंपल, ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट।
4: खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में गलत दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की। और प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से जमीन प्लॉट और फ्लैट निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित

0: किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अब तक निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं कुमार बल।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया है। गृह विभाग ने विशेष अवसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की हैं। नई व्यवस्था के तहत पुलिस जोन और रेंज में तैनात पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ ही जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, सिटीएसपी और ग्रामीण एसपी भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अपने स्तर पर ही निवारक कार्रवाई करते हुए बॉन्ड या मुचलका भरवा सकेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राज्य में नव सृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में हाल में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में बिहार के 81% लोगों को अवसर मिला है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि कुल चयनित 2451 सहायक प्राध्यापकों में 1980 बिहार के निवासी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में राज्य में लागू आरक्षण नीति के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है। श्री चौधरी ने कहा कि आगे किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर 17 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू होगी। श्री तिवारी ने कहा कि तबादला प्रक्रिया के दूसरे चरण में वे शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जो किन्हीं कारणों से पहले चरण के तहत आवेदन नहीं कर पाए थे। मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य 31 अक्टूबर तक तबादले से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन करना है। महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के भीतर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल और बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत किया जाएगा। प्रदेश में जमीन, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। 17 अगस्त से सभी निबंधन कार्यालयों में यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। पेपरलेस निबंधन के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प शुल्क भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन और हस्ताक्षर तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निबंधन के बाद डिजिटल डीड की प्रति व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के 50 निबंधन कार्यालयों में यह व्यवस्था पहले ही शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित

0: आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिलाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 20वीं GI समीक्षा बैठक में शाहबाद का अनरसा, मनेर का लड्डू और कोसी जूट जैसे नए उत्पादों को भी GI पहचान दिलाने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान GI टैग दिलाने के लिए प्राप्त 28 आवेदनों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इनमें 10 आवेदन स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश के 3 उत्पादों, नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया की पत्थर कट्टी शिल्प कला और भोजपुर की पीढ़िया चित्रकला को GI प्रमाण प्रदान किया गया है। प्रदेश में अति संक्रामक रोग खसरा रूबेला के उन्मूलन के लिए 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस अभियान के तहत सभी जिलों को निर्धारित तिथि तक छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। विशेष अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी छूटे हुए बच्चों का सर्वे कर सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद नियमित टीकाकरण सत्रों के अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। गौरतलब है कि खसरा रूबेला तेजी से फैलने वाला रोग है, जिसके प्रभाव से बच्चों को निमोनिया, दस्त और दिमागी संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। केंद्र सरकार ने पान मसाला की पैकिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक, पॉलिथीन, PVC, सिंथेटिक पॉलीमर, एल्यूमिनियम फॉयल और मेटल की परत के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पान मसाला की पैकिंग के लिए प्लास्टिक रहित कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोज या दूसरे प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। नया नियम गजट में प्रकाशित होने के साथ ही 10 अगस्त से लागू हो गया है। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में के जिलों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 12 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: राज्य के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। बांका जिले में 5, लखीसराय और नवादा में 3-3 तथा पटना में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि देने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। सुपौल जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सुकुमारपुर में स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर एक कुरियर कंपनी के गोदाम से 50 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। अररिया जिले में आज से HIV/AIDS जागरूकता महाअभियान की शुरुआत हो रही है। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए समय पर जांच, सुरक्षित व्यवहार और सामाजिक सहयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। अब खबरें खेल जगत से।

समस्तीपुर के नूतन सिंह को क्रिकेट के वीमेन्स प्रीमियर लीग में चयन ट्रायल के लिए यूपी वॉरियर्स टीम में आमंत्रित किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने बताया कि नूतन 14 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले ट्रायल में शामिल होंगी। जमशेदपुर में खेली गई सीआईएससीई क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता में पटना के उपनिषद राय ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। उपनिषद ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। पटना के श्रीकृष्ण खेल मैदान पर 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस कप अंडर 13 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सरदार पटेल स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के अंतर्गत 651 एकड़ क्षेत्र में स्पोर्ट्स हब विकसित किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इस दौरान खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी उपस्थित थी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मिश्रा ने बताया कि राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित स्पोर्ट्स हब में स्पोर्ट्स सिटी, गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। खेल मंत्री सुशील सिंह ने कहा कि स्पोर्ट्स हब में ओलंपिक मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं बनाई जाएंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सहयोग शिविर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री ने 181 आवेदनों का निष्पादन किया। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, बांका में तैनात कार्यपालक अभियंता के पास 8 जमीन फ्लैट मिले, 81 लाख के गहने। प्रभात खबर लिखता है, टोल प्लाजा के नजदीक रहने वालों को लेना होगा 3000 का वार्षिक पास। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिहार की 4 परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच करेगी ईडी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने विधेयक पारित किया, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नवसृजित डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में गलत दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की। और प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से जमीन प्लॉट और फ्लैट निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: अभी आप इंदीवर की लिखी ये गजल सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। आइए करते हैं आज की बात। आज आलमी यौमे नौजवान है। हर साल 12 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। अक्वामे मुताहिदा ने इस दिन को नौजवानों के दरपेश चैलेंजेस और मौके की तरफ तवज्जो देने के लिए मखसूस किया है। इसका मकसद नौजवानों को आलमी तरक्की के लिए ज़रूरी शराकतदार के तौर पर उजागर करना, दुनिया भर के नौजवानों के मसाइल के बारे में शऊर व बेदार करना, इसकी माशरत में भी की गई खिदमत और का जितने भी खिदमत में उसके जश्न मनाए जाते हैं, हुकूमतों और इदारों को नौजवानों की तरक्की की हिमायत के लिए तरगीब देना। इसके अलावा इस खास दिन में नौजवानों के कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, सकाफती तकरीबात और सोशल मीडिया मामात के जरिए मनाया जाता है, जो नौजवानों को अपनी तशबीहात और ख्यालात और इस ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम करते हैं। 12 अगस्त का यह दिन नौजवानों की तरक्की में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर देना है और ये यकीनी बनाना है कि नौजवानों के पास कामयाबी के लिए ज़रूरी मौके और वसाइल हों। नौजवान पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए अहम है। हुकूमतों को नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसियों को तरजीह देना चाहिए। ये दिन नौजवानों की हिमायत और इनके फैसलों में शामिल करने की अहमियत को याद दहानी कराना है। ये नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस को हल करने और इनकी सलाहियतों को बरोएकार लाने के लिए जारी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देना। तो ये थी आज की बात। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का मखाला। मखाले का आज का उन्वान है जंगे आज़ादी में मुस्लिम खवातीन का किरदार। मखाला निगार हैं नूरुस्सलाम।
1: हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख कुर्बानियों, इस्तेकामत, हुर्रियत पसंदी और ईसार से इबारत एक ऐसी दरख्शां दास्तान है जिसके हर वर्क पर बेशुमार गुमनाम और नामवर मुजाहिदीन के लहू के नकूश सबत हैं। जब भी जंग आज़ादी का जिक्र आता है तो हमारे जहन में बहादुर सिपाहियों, अजीम सियासी रहनुमाओं, उलमाए किराम, इनकलाबियों और कौमी कायदीन के नाम उभर कर सामने आते हैं। लेकिन इस तारीख का एक रोशन और काबिल फख्र बाब वो मुस्लिम खवातीन हैं जिन्होंने खामोशी, इस्तेकामत और बेमिसाल जुरत के साथ तहरीक आज़ादी को कुव्वत बख्शी। हिंदुस्तान की आज़ादी सिर्फ मैदान जंग में लड़ने वालों की मरहून मिन्नत नहीं थी बल्कि उन माओं की भी मरहून मिन्नत थी जिन्होंने अपने बेटों को वतन पर कुर्बान होने की तलकीन की, उन बीवियों की भी जिन्होंने अपने शौहरों की असीरी और जिला वतनी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, और उन बेटियों की भी जिन्होंने अपने आराम व आसाइश को

दिखाई देता है हर सू, जो खारे का मौसम दिखाई देता है हर सू।

मौसम मैं क्या बताऊं तुम्हारे दयारे का मौसम। हर एक गली में

और आखिरी शेर अर्ज किया है, अगरचे आँखों में फैली हुई उदासी है,

0: शुक्रिया।
1: सामिन, अभी आप मोहम्मद ताहिरुद्दीन से उनके खूबसूरत कलाम समाप्त कर रहे थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गजलों का लुत्फ उठाते हैं।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ।

प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
0: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबे छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। घर घर केर वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केर वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एकै क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप फिल्म संगीत सुनेंगे।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना हमने लिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है प्यासा सावन।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। एसडी बर्मन के संगीत में किशोर कुमार की चुलबुली आवाज। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को हमने लिया है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

अगला गाना सुनिए गौहर कानपुरी का लिखा हुआ, जिसे राजकमल ने संगीत दिया है। जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज है। फिल्म है सावन को आने दो।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म है आई मिलन की रात।

आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत के अंतर्गत आज सुनवा रहे हैं कुछ नचारी और महेशवाणी। कलाकार हैं पूनम कुमारी, सरिता परासर, बोध नारायण सिंह, कल्याणी सिन्हा बम सहेली और प्रेरणा कुमारी।

लोकगीतों का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। हमारी प्रथम सभा जारी है, कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

रेडियो है 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं विश्व मोहन भट्ट।

शास्त्रीय संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आज के कलाकार हैं विश्व मोहन भट्ट। अभी आपने सुना मोहन वीणा का राग देश, आलाप विलंबित द्रुत रचना तीन ताल में। अब आपको सुनवा रहे हैं राग सारंग, रचना कहरवा ताल में।

शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं।

0: ये सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए।

0: हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
0: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की
1: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
0: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
1: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
0: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओ, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओ, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओ, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
0: जी, और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके

0: उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
1: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के छात्र थे, तभी एक दिन
2: अरे दिलीप।
3: हाँ सुभाष।
2: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या?
3: वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
2: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
2: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
2: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
2: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
2: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
5: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
2: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
5: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
2: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
5: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody swine! बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
2: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
5: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
1: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया

0: कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
3: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं की सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
1: क्या हुआ सुभाष बाबू?
3: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
0: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
3: कौन? शिशिर?
4: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
3: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
4: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चला कर ले चलूंगा।
3: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
4: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
3: ठीक है।
4: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
3: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
4: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा

0: खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
1: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ मौलवी साहब।
2: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
1: लाओ लाओ।
2: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
0: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
2: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज साहब।
3: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
0: ये अखबार कहां गए?
3: हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
4: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
5: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
6: जय हिंद,
7: जय हिंद, जय।

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर

0: काट कर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तैयार हैं।
0: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
2: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
0: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
3: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
0: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
3: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानो उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एनसीईआरटी उमंग, अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है नए फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं विशाल और शेखर की गाय फिल्म फाइटर के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है कुमार ने, संगीत निर्देशन भी विशाल और शेखर की जोड़ी का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म सैम बहादुर से। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत निर्देशन शंकर एहसान और लॉय का, आवाजें शंकर महादेवन, विशाल डडलानी और दिव्य कुमार की।

नए फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको जावेद अली और दीपाक्षी कलिता की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने, संगीत निर्देशन अमित त्रिवेदी का। फिल्म का नाम है मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे।

कार्यक्रम का अगला गीत सुना रहे हैं आपको फिल्म मिशन मजनू से सोनू निगम और रोचक कोहली की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, संगीत निर्देशन रोचक कोहली का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म मैदान से एआर रहमान और नकुल अभयंकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, संगीत निर्देशन एआर

फिल्म केसरी टू का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मनमोहन वारिस, कमल हीर और संगतार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे सुखविंदर अमृत ने, संगीत निर्देशन संगतार का था। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म IB71 से, आवाज़ शादाब फरीदी की। गीत के बोल लिखे हैं अभिनव शेखर ने और संगीत निर्देशन विक्रम मोंतरोसिका।

शादाब फरीदी के गाए फिल्म IB71 के इस गीत के साथ ही नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। कुछ और नए फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे आप हमारे केंद्र से दूसरी सभा में शाम 5:40 पर। कुछ अन्य फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे इस सभा में दोपहर 1:15 पर और 2:30 पर।

नमस्कार श्रोता बहनों, कार्यक्रम नारी संसार में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ रजनी, आपकी अपनी रेडियो सखी। बहनों, हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न रोचक विषयों के साथ उपस्थित हैं और साथ ही साथ बातचीत के बीच बीच में हम आपको फिल्म संगीत भी सुनवाएंगे। खास टिप्स में आज किचन टिप्स की बातें होंगी, तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और अपने मनपसंद कार्यक्रम नारी संसार का आनंद लेते रहिए। बहनों, आज मैं आपसे सबसे पहले एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो मानवता, संवेदना और जीवन से जुड़ा हुआ है, अंगदान। हाँ बहनों, हम सभी जानते हैं कि जीवन अनमोल है, लेकिन कई बार किसी गंभीर बीमारी या अंग के काम करना बंद कर देने के कारण किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान उसके लिए जीवन की एक नई उम्मीद बन सकता है। हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों के

प्रत्यारोपण से कई गंभीर रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। आँखों के दान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दृष्टि उपहार मिल सकती है, वो भी दुनिया देख सकता है आपके आँखों के जरिए। अंगदान केवल अंग देने का नाम ही नहीं है, बल्कि यह किसी अनजान व्यक्ति को जीवन देने का संकल्प है। यह एक महादान है। हम में से बहुत से लोग अंगदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कुछ लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां भी होती है। इसलिए जरूरी है कि अंगदान के बारे में समाज तक पहुँचे उसकी जानकारी, और लोग समझे कि मृत्यु के बाद भी हमारे अंग किसी दूसरे जरूरतमंद के जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, जीवन का सहारा बन सकता है, किसी के आंगन खिल सकते हैं। अंगदान के निर्णय सोच समझकर और परिवार से बातचीत करके लिया जाना चाहिए। और एक बात, अपनी इच्छा परिवार को बता

बाद भी हमारे अंग किसी दूसरे जरूरतमंद के जीवन में उपयोगी हो सकते हैं, जीवन का सहारा बन सकता है, किसी के आंगन खिल सकते हैं। अंगदान के निर्णय सोच समझकर और परिवार से बातचीत करके लिया जाना चाहिए। और एक बात, अपनी इच्छा परिवार को बताना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिवार आपकी इच्छा को समझ सके। कल्पना कीजिए, किसी परिवार ने अपना प्रियजन खो दिया, दुख की घड़ी में यदि उसके अंग किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दे सके, तो यह मानवता के एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए आइए अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाएं, भ्रांतियों को दूर करें और इस महान मानवीय कार्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। अंगदान जीवन के बाद भी जीवन से जुड़े रहने का एक सुंदर माध्यम है। अंगदान महादान है। और इस संदेश के साथ इस विषय पर हम विराम देते हैं, आगे भी हमारी बातचीत होगी। फिलहाल चलते हैं फिल्म संगीत की ओर, सुनते हैं कार्यक्रम बगीचा में पिरोया हुआ यह प्यारा सा नगमा।

बहनों, अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रही थी कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत। बहनों, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में महिलाएं घर घर में पूजा पाठ शिव की भक्ति में तो लगी ही हुई हैं, साथ ही साथ मेहंदी 16 श्रृंगार कर रही हैं। मेहंदी जो कि श्रृंगार को बढ़ोतरी, श्रृंगार में बढ़ोतरी करती है और साज सज्जा में निखार लाती है। एक तरह से तो सुहागिने मेहंदी करती हैं सुहाग की वृद्धि के लिए, सुहाग भाग की प्राप्ति के लिए, लेकिन मेहंदी के औषधीय गुण भी हैं और मेहंदी को लगाने से बहुत सारी बीमारियों में स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध हुई हैं। तो आइए हम अपनी रेडियो सखी लालती से जानें मेहंदी के औषधीय गुणों के बारे में।

नमस्कार श्रोता बहनों, लालती की ओर से। प्यारी बहनों, छोटी मुलाकात के अंतर्गत आज हम आपसे बातें कर रहे हैं, जिसका विषय है मेहंदी के औषधीय गुण। बहनों, मेहंदी जो हमारे आसपास आसानी से मिलने वाली पत्तियां हैं, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मेहंदी के पाउडर को पानी में भिंगोकर उसका लेप बालों पर लगाने से बालों को उचित पोषण मिलता है, जिससे बाल झड़ना कम हो जाता है।

जाता है और बाल नरम रहते हैं। श्रोताओं, आयुर्वेद में मेहंदी को उसके शीतल, सूजन रोधी और रोगाणुरोधी गुणों के लिए महत्व दिया जाता है। इसका उपयोग अक्सर पित्त असंतुलन जैसे त्वचा की जलन, सूजन या शरीर की अत्यधिक गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है। बहनों, शरीर को शांत करने की मेहंदी की क्षमता इसे गर्म मौसम में या जब मन और शरीर अत्यधिक गर्म हो तब आदर्श बनाती है। हथेलियों और तलवों पर मेहंदी का लेप लगाने से शरीर की गर्मी कम करने और बेचैनी से राहत पाने में मदद मिल सकती है। बहनों, घाव भरना और संक्रमण से बचाव, क्योंकि मेहंदी में प्राकृतिक जीवाणुरोधी और कवक रोधी गुण होते हैं जो छोटे छोटे कटने, जलने और त्वचा के संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं। प्यारी बहनों, मेहंदी से पाचन संबंधी लाभ भी मिलता है। पेट की जलन और एसिडिटी कम करना, पेट या आंतों के अल्सर को ठीक करने में मदद करना, किडनी स्टोन बनने से रोकना, प्लीहा और यकृत के स्वास्थ्य को सुधारना और कब्ज को दूर करना, ये सभी गुण मेहंदी में पाए जाते हैं। इसके अलावा मेहंदी के बीजों के सेवन से दिमाग भी तेज हो सकता है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। तो बहनों, हमें मेहंदी का सेवन अवश्य करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी गुण है इसमें। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: बहनों, इस संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी रजनी। बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। सारे युवा श्रोतागण को इस दिवस की शुभकामना। इस दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति की। हर वर्ष 12 अगस्त यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं की क्षमता, उनके विचारों और समाज व राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने का अवसर है। युवा किसी भी देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी। उनके पास ऊर्जा है, नई सोच है, सपने हैं और उनके सपनों को पूरा करने का साहस भी है। आज युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल, कला, व्यवसाय और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। लेकिन युवा शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब युवा अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझे। उन्हें नशे और गलत संगति से दूर रहकर अपने समय और ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। आज युवाओं के सामने रोजगार और करियर की चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के साथ अवसरों की कमी नहीं है। कौशल विकास, स्वरोजगार, स्टार्टअप और डिजिटल माध्यमों ने युवाओं के लिए नई राहें खोली हैं। जरूरत है तो केवल अपनी रुचि और क्षमता को पहचान कर लगातार मेहनत करने की, एक लगन होने की, एक साहस कुछ कर गुजरने की, एक जागरूकता,

युवा अपने भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन, संवेदनशीलता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करें। तो आइए इस युवा दिवस पर हम संकल्प लें कि अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग कर एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। युवा जागेगा तभी आगे बढ़ेगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ सभी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े एक विशेष अभियान की, हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। तिरंगा केवल तीन रंगों का बना एक ध्वज नहीं है, यह हमारे देश की एकता, स्वतंत्रता, सम्मान और विविधता का प्रतीक है। इसे देखते ही हमारे मन में उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद आती है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को और मजबूत करना है। लेकिन तिरंगा फहराना केवल एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए, इसके पीछे देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए। जब किसी घर पर तिरंगा लहराता है तो वह केवल उस परिवार की देशभक्ति नहीं दर्शाता, बल्कि यह संदेश देता है कि हम सब एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। हमारी भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकती है और खान पान परंपराएं भी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा देश एक है और राष्ट्रीय ध्वज हमें एक सूत्र में बांधता है। हर घर तिरंगा अभियान हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। देश के प्रति सच्चा सम्मान तभी है जब हम अपने आसपास स्वच्छ रखें, वातावरण की रक्षा करें, कानून का पालन करें, दूसरों का सम्मान करें और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करें। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को तिरंगे के महत्व और उसके सम्मान को बताना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें यह समझाना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए गौरव का प्रतीक है और इनके सम्मान से जुड़ी निर्धारित नियमों और मर्यादाओं का पालन अवश्य होना चाहिए। आइए इस अभियान को केवल एक दिन का उत्सव न बनाकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का अवसर बनाएं। अपने घर पर तिरंगा फहराएं, उसके सम्मान का ध्यान रखें और अपने बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करें। और आइए मिलकर कहें, मेरा तिरंगा, मेरा गौरव, मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी। इसी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता संदेश के साथ इस विषय पर विराम देती हूँ और चलती हूँ फिल्म संगीत की ओर। सुनते हैं राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ यह प्यारा सा नगमा।

बहनों, अभी आप कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत फिल्म केसरी का ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आइए अब चलते चलते कुछ किचन टिप्स की जानकारी हो जाए जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगी। बहनों, चावल में कीड़े ना लगे इसके लिए डिब्बे में 4-5 तेजपत्ता अवश्य रखें, जिस डिब्बे में चावल रख रहे हो। इसी तरह अगर दलहन कोई रख रहे हैं तो उसमें भी आप तेजपत्ता रख सकते हैं, या फिर कर्पूर को अच्छे से कॉटन कपड़े में बांध करके उस डब्बे में रख दीजिए, इससे उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। इसी तरह चीनी के डब्बे में 2-3 लौंग रख देने से चींटियाँ नहीं आती है और चींटी से सुरक्षित रहती है। इसी तरह बहनों, हरी मिर्च को डंठल हटाकर एयरटाइट डब्बे में रखने से, इसके बाद आप फ्रिज में उसे एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। ऐसा करने से वे अधिक समय तक सुरक्षित और ताज़ी बने रहते हैं। लहसुन की

0: कलियों को 10 मिनट पानी में भिगो दें, अब उनका छिलका आसानी से उतर जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाह रही हैं तो आप लहसुन की कलियों को थोड़ी कुछ सेकंड के लिए गर्म तवे पर भून लीजिए, फिर उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसी तरह मेथी, पालक या अन्य पत्तेदार सब्जियों को पहले धोएं फिर काटें, ताकि उसके पोषक तत्व ज़्यादा जाया न हो और वह सुरक्षित रहे, पोषक तत्व से भरपूर रहे। फ्रिज में खाने की चीज़ों को ढक कर रखें, इससे उनकी ताजगी बनी रहती है और उसका गंध दूसरे खाने तक नहीं पहुंचती है। इसी तरह अगर फ्रिज को फ्रेश रखना चाहती हैं तो फ्रिज में नींबू को काट काट करके कहीं कहीं रख देने से फ्रिज में ताजगी बनी रहती है और एक सुंदर सी खुशबू फैलती है। इसी तरह से नींबू को अधिक रस निचोड़ने के लिए नींबू से आप नींबू को कुछ सेकंड के लिए गर्म पानी में रखें, फिर निकाल करके उसका रस निचोड़ें तो उसका रस अधिक निकलता है, या नहीं तो नींबू को अधिक ऐसे ऐसे हथेली में बहुत घुमाते हुए रब करें और फिर उसका रस निचोड़ने से बहुत रस निकलता है। इस तरह से अगर रस को सुरक्षित रखना चाहते हैं और बहुत सारा नींबू आ गया आपके घर में तो आप आइस क्यूब बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं और उसका समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। तो बहनों, इसी के साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां हमें यहाँ और ठहरने की इजाज़त नहीं दे रही है। इसी कार्यक्रम के जरिए हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आज के कार्यक्रम से दीजिए अपनी रेडियो सखी रजनी को इजाज़त। नमस्कार।
1: ये था श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की

0: कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। 1:15 पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्मी गीतों का। 2:00 आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का समय होता है 2:15। 2:30 पर पुनः आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। 3:00 आप सुन सकेंगे कुछ सुगम संगीत। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर।

दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। इसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम। शाम 5:40 पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। मैत्री संवाद आप सुनते हैं शाम 6:25 पर। शाम 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

होगा शाम 7 बजे। जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा।

रात्रि 8:15 पर आप सुन पाएंगे भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। 8:30 पर सुनवाएंगे आपको कुछ मैथिली सुगम संगीत। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ @9 और 9:15 पर उर्दू खबरें।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया जाएगा।

रात्रि 11:05 पर 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

फिल्म शहीद का ये गीत अभी आपने सुना देशभक्ति गीत के अंतर्गत। आवाजें थी महेंद्र कपूर, मुकेश और राजेंद्र मेहता की। गीत और संगीत प्रेम धवन के थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो गया है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म वीर ज़ारा के इस गीत के साथ।

उदित नारायण, लता मंगेशकर, गुरदास मान और प्रथा मजुमदार को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म वीर जारा में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन मदन मोहन का।

श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं

0: हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको शाश्वत सचदेव और देव नेगी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत निर्देशन शाश्वत सचदेव का। फिल्म का नाम है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म बॉर्डर से रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार अन्नू मलिक।

0: click on the bell icon to get regular updates from
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म 10 से।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

0: पले पले।
1: चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।
2: यह है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी, आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम है

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आपको लिए चलते हैं अपने पटना केंद्र, जहां से आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार एवं इलाकाई खबरें। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

के चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया है। गृह विभाग ने विशेष अफसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की हैं। नई व्यवस्था के तहत पुलिस जोन और रेंज में तैनात पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ ही जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक CTS और ग्रामीण SP भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अपने स्तर पर ही निवारक कार्रवाई करते हुए बॉन्ड या मुचलका भरवा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के अलग अलग विभागों ने भारत की ग्रांट सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लगभग 803 मिलियन नेपाली रुपए की कुल लागत वाले 8 विकास परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: कटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लगने से मुसाफिरों में अफरा तफरी पैदा हो गई। हमारी नामानिगार ने बताया कि सोन वर्षा कचहरी और सिमरी बख्तियारपुर के दरमियान ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के पहिए के पास से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। इसकी खबर मिलते ही ट्रेन को सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर रोका गया। रेलवे मुलाजमीन और फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी मुसाफिर के जानी नुकसान की खबर नहीं है। रेलवे अफसरान ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। रियासत में जमीन, प्लॉट और फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का अमल अब पूरी तरह पेपरलेस होगा। 17 अगस्त से सभी रजिस्ट्रेशन दफातर में यह नया सिस्टम नाफिज होने जा रहा है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प ड्यूटी अदायगी, बायोमेट्रिक तस्दीक और दस्तखत तक का पूरा अमल ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिजिटल डीड की कॉपी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए दस्तियाब कराई जाएगी। गौरतलब है कि रियासत के 50 रजिस्ट्रेशन दफातर में यह सिस्टम पहले ही शुरू हो चुका है। मानसून के कमजोर पड़ने से रियासत में बारिश की सूरतहाल में कमी आई है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया के टिकारी में सबसे ज्यादा 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज रियासत के जनूबी खित्तों में कुछ मकामात पर आंधी के साथ बर्फबारी का इम्कान है, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए कुल पद 9124 हैं। आवेदन करने की जो तारीख है वह 11 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक है। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर वहां विजिट कर सकते हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए रिक्तियां निकाली हैं। कुल पद 11,403 हैं। इसके आवेदन 1 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट विजिट करें।

इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR के कुल पद 200 हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि है 20 जुलाई 2026 से लेकर आप 19 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष है। ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in है, यहां जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एनएफआर रेलवे अप्रेंटिक्स रिक्रूटमेंट 2026 कुल पद 6,777 आवेदन 20 जुलाई 2026 से लेकर 19 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे। न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष है। ऑफिशियल

रेलवे बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा के लिए कुल 119 पदों की रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन 15 जुलाई 2026 से 24 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। यदि आप इस आवेदन को करना चाहते हैं तो समय कम बचा है, अभी जाकर आप संबंधित वेबसाइट विजिट करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। समय हो रहा है दोपहर समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर

0: मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यूरो हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य

0: लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्र ध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय

0: में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अमित त्रिवेदी के गाए फिल्म केदारनाथ के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत निर्देशन भी अमित त्रिवेदी का है।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: ये है लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म आदमी में गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

कार्यक्रम का अगला गीत सुना रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार का लिखा हुआ। इस गीत को सुरों से सजाया है महेश किशोर ने। फिल्म का नाम है सनम बेवफा।

अरिजीत सिंह और मिथुन की गाय फिल्म सनमरे के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज जिन कलाकारों को आपने सुना वो हैं अनुपमा मिश्रा और रामविलास यादव। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

वीकेंड हो रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: सिल्क पहनना चाहती हैं तो वो ले सकते हैं। आप चाहे तो इस साल की दिवाली या बड़े उत्सव, कोई बड़े उत्सव के लिए भी इस साड़ी को ले सकते हैं। तो
1: साड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, अभी बेटी की शादी है इसके लिए खरीदारी चल रही है। कल ही एक साड़ी खरीदी जो पहनने पर सुंदर दिख रही थी। खंडुआ साड़ी का नाम पहली बार सुन रही हूँ, आपसे जानकारी मिलेगी, जानकारी भी मिल चुकी है।
0: बिल्कुल, और हमने जो पूछा था ना कि क्या पहनना ज्यादा पसंद है, तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है, ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है। तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
1: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में बाजारों में दिख रही है। साड़ियां चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है, मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वहीं हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदने तो जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं, पर देखा है ना आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है,

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: कितना
0: सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली आपका इशारा समझ गए हम मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है,
0: और उसमें सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है। नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है, पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है, और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुककर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं। जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान के नई उड़ान

0: आज देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है। ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है। ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती
1: हूँ। बिल्कुल। और ये संपादकीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पर लिखना है तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से उतनी नहीं। अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: और साथी कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे हैं,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
1: कितने सुंदर
0: बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी

असमंजता हमारे सामने आ जाती है और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना

0: मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना उसमें 1 घंटा चाहिए, कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं, तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं, तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे रोटी बना सकते हैं, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है, ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन दोनों मिक्स कर लें, इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं, घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
0: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है, कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया, अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, तो बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
0: और अब क्या करना है,
1: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा, हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नौवीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया।

0: तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। तो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ, चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी, झिझक भी चली गई मेरे के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया, कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी, अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोले अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म, शंकर जयकिशन।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर करके कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया. यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो. वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे.
1: बिल्कुल, उस जमाने
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम. राजेश देवराज हेड राइटर होते थे. तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था. मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ. मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे. बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी. तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे

0: नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज माझा
1: इन्हें बस स्टैंड, होटल, ढाबा सब जगह ढूंढा गया, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई पता नहीं चला। आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी या सूचना है तो आप संपर्क करें थाना सरधना जनपद मेरठ से। ये थे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं से संबंधित प्रोग्राम युवा।

0: सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहां प्रोमो करने के लिए गया, वहां बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी।

0: तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूं। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
1: ऐसी बोल दिया।
0: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
1: ओके
0: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह,
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
1: Right.
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की, राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स वाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो हाँ, तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था हमने। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला। मैंने कहा सुमराई कला

0: कैसे सीखें रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड
1: कोर्स।
0: हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताए कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे। तो एक फेक एड आएगा उसके बाद असली एड
1: आएगा।
0: तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में 26 एपिसोड में हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स। तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने
0: इन आउट तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया। मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना।
1: बिल्कुल,
0: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए। तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कानून
1: छूट जाते हैं,
0: लूज ऐसे ऐसे छूटते हैं जो बाद में आप ना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें।
1: बिल्कुल,
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया। दो शोज हमने किए, उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने। और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है। उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस। You will move your feet and groove the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!
2: Charleston?
3: No!
2: Polka?
3: No!

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थी और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह वाह।
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना,
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे। तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
0: बिल्कुल,
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
0: बाबा।
1: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वरना
1: सब सब सब वालों को बता देंगे, सब लोग रोमन, सब रोमन में पढ़ते हैं
0: जी।
1: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं, या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
0: ऑफ कोर्स।
1: तो वो किया हमने। अस्ट्रा फोर्स नाम था उस शो का। साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। बाहुबली आई थी, तब पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा, तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो डॉट 11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने

0: डेढ़ साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट,
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे, उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे, फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे, उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके दो संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है, तो वो एक जो चीज थी।

ट्रांसमीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम जितने भी युवा लोग हैं वो सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। युवाओं को कहा जाता है कि देश की आन बान शान होते हैं और युवाओं के कंधे पर ही देश की पूरी भूमिका होती है, और ये बिल्कुल सही भी है कि हम युवाओं को ही आगे बढ़कर बढ़ चढ़ कर किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चीज़ में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, ताकि हमसे आने वाले जो जनरेशन के लोग हैं, उसके बाद की जो पीढ़ी के लोग हैं, वो हमसे कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें। हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं और ये कामना करते हैं। चूँकि हमने पहले भी कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जिस पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और इस पर एक रेडियो रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। श्रोताओं, युवाओं को अपनी एक जिम्मेदारी, एक दायित्व के साथ अपने समाज में, अपने जीवन में या अपने देश के प्रति उनका एक अलग ही पहचान होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख सकें, छोटी छोटी चीज़ों का हम ये कोशिश कर सकें कि हम आगे कैसे बढ़ें। हमारे साथ जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी हमारे सामने कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को हम कैसे देख सकें, उन कठिनाइयों को हम कैसे फेस कर सकें, और फेस करते हुए ये कोशिश हम करें कि उन कठिनाइयों में जो भी बाधाएं हमारे सामने आती है, जो भी दुश्वारियां हमारे सामने आती है, उन चीज़ों को हम आगे बढ़ने में, जो चीज़ हमारे सामने जो दिक्कत हमें देता है, उन चीज़ों को हम कैसे हल कर सके और बिल्कुल सावधानी पूर्वक हम इन चीज़ों को करके आगे बढ़ें। कभी कभी किसी चीज़ को करने के दौरान में होता है कि हम उसमें कामयाब नहीं भी होते हैं, तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हम हताश ना हो, निराश ना हो। और कहा जाता है कि ज़िंदगी सिक्के की दो पहलू हैं, जहाँ एक तरफ दुख है, एक तरफ खुशी है। खुशी को हमें इतना मिलजुल कर नहीं बांटना चाहिए कि वो खुशी पल भर के लिए रहे, और दुख को हमें ऐसा नहीं लेकर चलना चाहिए जो लगे कि जीवन हमारा दुख से ही भरा हुआ है। हम अपने जीवन को हमेशा कोशिश ये करें कि एक संतुलित लेकर चलें, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल एक अच्छा गुजरे। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं भी है जिसकी हमें चाह है, तो उसे प्राप्त करने के लिए तरीका, जो तरीका है, उस तरीका से हम उसको हासिल करने की कोशिश करें। बहुत सारे युवा वर्ग के लोग जो किसी भी प्रतियोगिता में बैठते हैं, परीक्षाएं देते हैं या किसी भी चीज़ में जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम वो उन चीज़ों में कामयाब ही हो जाएं। कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो अपने आप में निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करते रहना चाहिए कि हम अगली बार और भी अच्छा कर सकें। जब भी कभी हम किसी चीज़ में फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, खुद को, अपनी किस्मत को, ऊपर वाले को दोष देने से ज़्यादा अच्छा है और बहुत सही तरीका ये है कि हम ये कोशिश करें कि हमारी जो फेल होने की वजह है, हमारे हारने की वजह है, हमारे पीछे रहने की वजह क्या थी, इस वजह को हम खोजने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि हम कहाँ पीछे रह गए थे, और यकीन मानिए दोस्तों कि ये वजह अगर हम खोज पाते हैं तो हम अपने जीवन में ज़रूर सफल हो पाते हैं। ये एक साधारण सी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में हम जजमेंट सही नहीं ले पाते हैं, सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ जो मेरे साथ हो गया ये गलत हो गया, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है, फौरी तौर पर हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसके जो अवगुण था, जहाँ पर कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को आप कोशिश करें खोजने की कि हमारे साथ क्या दिक्कत था जो हम पीछे रह गए। अगली बार हम इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ये करने की हम कोशिश करें। और लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: तो समय ना गवाएं।

0: अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हमने कहा था कि आज विश्व युवा दिवस हम लोग मना रहे हैं, इस पर एक रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे, तो सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।

0: श्रोताओं नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट के साथ मैं दीपक कुमार झा। श्रोताओं आज 12 अगस्त है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष का थीम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स कॉमन एस्पिरेशंस यानी अलग संदर्भ साझा आकांक्षाएं हैं। यह दिन युवाओं के मुद्दों पर चर्चा करने और वैश्विक समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज हमने दरभंगा जिले के विभिन्न सरकारी संस्थानों के अधिकारियों एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बातचीत की। दरभंगा के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह जिला खेल पदाधिकारी चंदन कुमार ने कहा कि युवाओं के लिए कला एवं खेल के क्षेत्रों में भी कई सारी लाभकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाकर युवाओं को आगे आना चाहिए।
1: खेल विभाग और कला संस्कृति विभाग दोनों ही विभाग से युवाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हो रही है जिसमें कि युवाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। उसमें जैसे कि आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र है जो कला एवं संस्कृति विभाग के अंदर आता है और उस प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग छोटे बच्चों से लेकर किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण देते हैं, म्यूजिकल हो, डांस हो। इसके अतिरिक्त खेल में भी बहुत सारे योजनाएं हैं जैसे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ का बहुत ही बड़ा वो एक राज्यव्यापी देशव्यापी योजना है। खेलो इंडिया के तहत भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित की जाती है कि वो अलग अलग खेलों में बहुत ही इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर।
2: जो ग्रामीण युवा है उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि हर एक पंचायत में प्लेग्राउंड बनने की
1: कई सारे पंचायतों में निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है, कई जगह पे प्रस्तावित है और हम लोग भी उसका जगह जो है चिन्हित करके उसको विभाग को भेज रहे हैं कि वहाँ के लिए आगे के जो भी कार्य योजना हो उसको बताएं। इसके अतिरिक्त एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र है जो कि दरभंगा कुछ जिलों में है पूरे बिहार के, तो दरभंगा उसमें से एक जिला है और ये खुशी की बात है कि यहाँ पे बैडमिंटन और हैंडबॉल के जो मेल प्लेयर्स के लिए जो अंडर 17 के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंशियल ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका वो बेनिफिशियरी बने हुए हैं।
2: तो गांव में जब प्लेग्राउंड हो जाएंगे तो उससे वहां के युवाओं को क्या लाभ पहुंचेगा?
1: जैसे पंचायत स्तर पर आपने बोला कि वहां पे बन रहे हैं और हम बहुत सारी चीजें वहां पे अभी जमीन पर आने वाली है जो बचे हुए कुछ पंचायत वहां पे जब ये कंप्लीट हो रहा है और कई जगह पे लोग सीख रहे हैं वहाँ पे उनको एक खेल का मैदान मिल रहा है, वहाँ पे पंचायत क्लब का भी गठन किया गया है जिसमें कि सचिव हो या फिर कोषाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो और भी सदस्य हैं, वो लोग मिलकर कुछ योजना अगर तैयार करते हैं तो हमें सूचित करेंगे और हम लोग विभाग से उसकी बात करके उस जगह पे कोई खेल का आयोजन करवा सकते हैं ताकि एक खेल को लेकर भी जो एक परसेप्शन है वो चेंज हो। खेल बेसिकली नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ऐसा नहीं है कि जो यूजुअली एक परसेप्शन था कि खेल रहे हैं तो खेल से ज्यादा कुछ लाइफ में होना नहीं है, तो वो परसेप्शन को चेंज करने का भी एक ये बड़ा कदम है।
2: दरभंगा जिले जो हमारे यूथ हैं उनके लिए क्या संदेश होगा?
1: मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो खुद को पॉजिटिव रखें हर चीज को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर आर्ट एंड कल्चर या इसके अतिरिक्त और भी कुछ भी जो जिस चीज को परस्यू कर रहे हैं जो नेशन बिल्डिंग, बिल्कुल जो एक्स्ट्रा करिकुलर बेसिकली क्या है कि वो नेगेटिव एक परसेप्शन है। एक्स्ट्रा करिकुलर बोलना भी क्या है कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको चेंज किया गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर बोलने से लगता है कि वो एक्स्ट्रा है, अब वो भी मेन करिकुलर का पार्ट है। तो मैं यही बोलूंगा कि वो जो भी कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को बिल्कुल पैशनेट तरीके से उस पर काम करें।
0: जिला गंगा समिति दरभंगा के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूख इमाम ने आकाशवाणी से अपने बातों को साझा करते हुए बताया कि युवाओं के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और नीति

0: निर्माण में उनकी सार्थक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही युवा दिवस को मनाने की सार्थकता है।
1: जिला गंगा समिति दरभंगा जो है वो नमामि गंगे कार्यक्रमों की जिला स्तर की इकाई है। इसमें हम लोग जो है नदियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं
2: और इसमें जो युवाओं की भूमिका है उस पर हम चाहेंगे कि आप अपने बातों को रखें।
1: इस कार्यक्रम में जो है ये नमामि गंगे कार्यक्रम है नदियों का संरक्षण पुनर्जीवन, इसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसे की एक कंसेप्ट है पीपल रिवर कनेक्ट, मतलब नदियों के साथ आम लोगों का जुड़ाव। और जहां हम आम लोगों की बात करते हैं किसी बदलाव के लिए तो वहां युवा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये देखा गया है, ये तय बात है, ये साबित चीज है कि युवा जो चाहता है वो बदलाव कर जाता है। तो इसीलिए आप भी देखते होंगे कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम होता है लोगों के जन जागरूकता के लिए, उसमें बड़े स्तर पे युवा हमारे साथ जुड़े होते हैं। हम युवाओं को इसमें सहभागी कराते हैं और युवाओं के माध्यम से बदलाव लाने का कोशिश किया जा रहा है और बदलाव आ रहा है और युवा का बहुत योगदान है इस कार्यक्रम में। आज का जो समय है ये ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो विश्व स्तर पे क्या चल रहा है इसमें भी युवाओं को खासा ध्यान रखने और उस पर नजर रखने की जरूरत है और उसमें हम अब कैसे योगदान दे सकते हैं उस पर कार्य करने की जरूरत है। आज का हमारा देश का युवा बहुत जागरूक है, वो फैक्ट्स पर ध्यान रखता है, क्या चीजें हो रही हैं हर चीजें उन्हें पता है। तो ज्यादा से ज्यादा और युवाओं को इस ओर आकृष्ट होने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पे क्या चल रहा है, वैश्विक नीतियां कैसे बन रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज विश्व की कैसे चल रही है, उस पर काम किया जाए ताकि जो है विश्व के साथ साथ हम अपने देश को विकसित बना सके आने वाले 2047 में।
0: आज दरभंगा जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहां के युवाओं के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसमें शहर के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। हमने कुछ युवाओं से बातचीत की, सुनते हैं संपादित अंश।
2: क्या नाम हुआ आपका?
3: मेरा नाम हुआ सुमेधा श्रीवास्तव, मैं सीएम कॉलेज की एनएसएस की स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी से हूँ, सेमेस्टर 6 में है, 2023-27 सेशन हुआ मेरा।
2: अच्छा अच्छा, तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और युवाओं को किस तरह से अपने आप को लक्ष्य के धनात्मक दिशा में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना होता है और रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है?
3: अभी के युग में जो है युवाओं के पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि फोन हो गया, फोन में सोशल मीडिया है, बहुत सारा ऐसा ऐप है जो कि हमें अपने लक्ष्य से डेविएट करती है। जैसे हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हुए तो हम उस पर्सपेक्टिव से बताना चाहेंगे कि जितना नेगेटिव चीज या नेगेटिव थॉट में हम लोग रहेंगे उसी हिसाब से हमारा पूरा पर्सनालिटी भी बन जाएगा और अपने पर्सनालिटी का सुधार करने के लिए हमको
2: दोस्त हमें किस तरह का बनाना चाहिए?
3: दोस्तों हमें सबसे पहले जो कि हमें पॉजिटिव वे में इनकरेज करें वैसे दोस्त को रखना चाहिए, और दोस्त देखा जाए तो अपने से थोड़े से जो ऊपर रहे उनको दोस्त बनाना चाहिए क्योंकि हम भी उनसे कुछ कुछ सीख सकते हैं और हम उनको कुछ सिखा भी सकते हैं। प्लस एनवायरनमेंट का असर हमारे माइंड, हमारे पर्सनालिटी और हमारा जो थॉट है उस सारे
2: तक संगत की बात है, किस तरह का संगत रखें?
3: अच्छा ही संगत रखना चाहिए। इंसान जो है एक तरीके से पॉजिटिव वे में बात करे, और एक और चीज है कि उनका जो थॉट हो वो पॉजिटिव हो। प्लस जो है एक दो टाइप का थॉट होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, तो जो जिनका थॉट कंस्ट्रक्टिव थॉट हो उन्हीं के साथ रहना चाहिए।
2: क्या नाम हुआ आपका?
4: मेरा नाम सूरज ठाकुर हुआ, मैं चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय का छात्र हूँ जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो अक्सर कहा जाता है कि जो हमारा युवा है वो भविष्य है, लेकिन महोदय वो भविष्य नहीं, वो वर्तमान है हमारा युवा। आप उसको भविष्य बोल बोल के क्यों, वो अपना मौज मार रहा है कि भविष्य आएगा तो देखा जाएगा, अभी कुछ कर ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमारा युवा वो जो भविष्य है उसको छोड़िए, वो वर्तमान है, अभी से उसको सशक्त बनाइए, उसको उस काबिल बनाइए कि वो आगे कुछ कर सके। तो युवा तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में जो भी युवा है उनको एक साथ संकल्प लेना चाहिए कि वो सिर्फ बदलाव की बात ना करे बल्कि बदलाव का हिस्सा बने।
2: क्या नाम हुआ आपका?
5: सोनू कुमार, मैं सर सीएम साइंस का छात्र हूँ, एमएससी थर्ड सेमेस्टर, जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट है।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इस अवसर पर आपकी ओर से क्या संदेश होगा?
5: युवा तो वास्तव में एक अवधारणा है कि हम लोग एक तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति क्या योगदान दे सकते हैं। हम लोग कर्तव्यों पे तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम जब बात आती है अधिकार की, लेकिन हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कर्तव्य भी हैं जिसका निर्वहन हम लोग को करना चाहिए। और दूसरा ये कि हम लोग जो है एकेडमिक

0: पड़ रहा है। जैसे आज हमारे एक तरीके से दरभंगा में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकला, उसमें मैम हमने देखा कि युवाओं में एक चीज की कमी है, उसका है कि वो सेल्फ यानी खुद से जो अनुशासन में रहने का जो एक तरीके से शक्ति है वो धीरे धीरे युवा खो रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग जो है शिक्षा जगत में किताबी ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन उसका जो चरित्र निर्माण है, व्यक्तित्व निर्माण है, और जो लोगों के मन का एक तरीके से जो विचार की व्यवस्था है, उसको एक तरीके से सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। टीचर और जो छात्र है उसके बीच में इतना ज्यादा गैप हो गया है कि वो सही से इंटरेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जब टीचर और किसी भी समाज में जब शिक्षक और जो छात्र है बीच में इतना ज्यादा एक तरीके से गैप आ जाता है, तो वहीं पर एक तरीके से जो युवा है वो पिछड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही वो एक तरीके से बोल सकते हैं इंजन है जो हम सभी बोगी को, एक प्रकार से छात्र जो है वो बोगी समान है और जो शिक्षक है वो इंजन समान है। जब वही एक तरीके से ठप पड़ जाएंगे तो हम लोग का कौन दिशा निर्देश करेगा? तो ये भी सारी चीजें हैं जिसका एक तरीके से होना चाहिए हमारे समाज में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दरभंगा एवं मधुबनी जिला के जिला युवा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर से हमने फोन के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि युवा के समय के महत्व को देखते हुए सदैव सकारात्मक दिशा की ओर हमें चलना चाहिए और विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए।
3: मेरे युवा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप लोगों से मेरा एक मैसेज रहेगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो एक ऐसी युवा शक्ति को देखते हैं जो कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने में आप युवा लोगों का सहयोग मिलेगा। वो कहते हैं कि सारे युवाओं को उनके पास आप ही शक्ति होनी चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए और इतने बड़े सपने होने चाहिए जो कि अपने परिवार, अपने समाज और पूरे भारत को विकसित करने में समर्थ है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग हार्डवर्क करें, अपने ऊर्जा और अपने जो भी आपके टैलेंट है उसको सही दिशा में लगाएं ताकि आप अपने परिवार का, अपने समाज का और पूरे देश का उद्धार हो सके।
2: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के तत्वावधान में 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में आज के 5वें दिन राज्य आपदा मोचन दल यानी SDRF की टीम द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं को विभिन्न तरह के आपदाओं से बचाव पर प्रशिक्षण दिए गए। अवसर पर हमने SDRF के प्रशिक्षक कृष्ण नंदन सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं को न्यूनतम करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित होना आज के समय की मांग है।
4: इसमें देखिए, हम लोगों का SDRF की जो टीम है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा बिहार जो है एक बहु आपदा प्रबंधन राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक और मानवीय दोनों आपदा आते रहते हैं और इसमें सबसे जो है गोल्डन समय में जो युवा वर्ग के लोग हैं अगर उनको जागरूक किया जाए तो उस स्थिति में आपदा जो है कम किया जा सकता है। और ये हमारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 2015 से लेकर 2030 तक का ये प्लानिंग है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको आपदा के बारे में जागरूक किया जाए तभी ये आपदा कम हो सकता है।
1: तो क्या कहिएगा, जो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है तो इस दिवस को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगा?
4: देखिए, आज युवा दिवस है और हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि युवा वर्ग के लोगों को आपदा के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है और अगर हमारे युवा वर्ग के लोग आपदा के बारे में भी अगर जागरूक होंगे तो ये आपदा 75% से लेकर 50% तक जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, नाव डूबने का केस हो रहा है, तो ये भूकंप है, आग लगने का केस है, तो ये जो युवा वर्ग के लोग हैं ये सभी आपदा के बारे में अगर यदि जागरूक होंगे तो ये आपदा कम होगा। तो इसके प्रति हम लोग युवा वर्ग के लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
2: वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक RN चौरसिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की शक्ति, उनके नए विचारों और समाज तथा देश के विकास में उनकी जरूरी भूमिका को याद करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में भी युवा ही देश के भविष्य और रीढ़ होते हैं।
5: राष्ट्रीय सेवा योजना नाम से स्पष्ट है, समाज सेवा का काम इसमें मुख्य

0: रूप से होता है, चाहे वृक्षारोपण हो, स्वच्छता कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य शिविर लगाना हो, रक्तदान शिविर, और उन्हीं में से आपदा प्रबंधन बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग का प्रारंभ हुआ है। विगत 4 फेज में चलना है, 200-200 का 800 छात्रों का इसमें प्रशिक्षण होना है, जिसमें 3 जिला शामिल हैं। इस विश्वविद्यालय के मधुबनी, जिसका अभी प्रशिक्षण चल रहा है, आज 5वां दिन है, दरभंगा जिला और समस्तीपुर जिला, 800 को प्रशिक्षण पहला बैच में, 200 का भी प्रशिक्षण SDRF की टीम, 11 सदस्यीय टीम प्रशिक्षण दे रही है जी। इसमें हमारे NSS के वॉलेंटियर जो कॉलेज में इनरोलमेंट है विभिन्न इकाइयों में, और जिनकी अवस्था कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष युवा वर्ग में आते हैं, और उन्हीं का यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: क्या कहते हैं, युवाओं पर यह देश निर्भर करता है, आगे युवाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगा, जो इस विश्वविद्यालय के अधीन जो भी छात्र छात्राएं हैं?
0: युवा शक्तिमान, ऊर्जावान, जोशीले होते हैं, और उन्हें ही सामाजिक परिवर्तन का संवाहक माना जाता है। भारत युवाओं का देश है, और युवा जितने प्रशिक्षित होंगे, संवेदनशील होंगे, जागरूक होंगे, उतना ही हमारा समाज कल्याणकारी बनेगा। हमारा युवा वाहक है, और इनके माध्यम से, इन्हें प्रशिक्षित करके हम पूरे समाज को, अगर आपदा के संबंध में वो प्रशिक्षित हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो फिर आपदाओं का जो कैजुअलिटी है उसमें मृत्यु दर, धन, जन और धन दोनों की हानि को हम कम से कम कर सकते।
2: यहाँ प्रशिक्षण ले रहे युवाओं और प्रशिक्षक से भी हमने बातचीत की, प्रस्तुत है संपादित अंश।
3: मेरा नाम मणिकांत ठाकुर, और हम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना से TOT से नॉमिनेट यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में हैं। अभी यहाँ पे आपदा मित्र का जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें हम लोग अभी 7 दिवसीय कैंप है, जो मधुबनी का 200 बच्चा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। युवाओं की भूमिका जो है, सो विकसित भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो बात करते हैं 2047 का, अभी से जो आपदा मित्र है, जो युवा का हम लोग प्रशिक्षण देकर, आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की आपदा आते हैं, तो उसमें हमारे जब तक आपदा के लोग आएंगे, तब तक हमारे वहाँ के युवा जो है, सो आपदा से निपटने के लिए उनको यहाँ 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। माय भारत का वॉलंटियर है, उनको भी दिया जाता है, NSS के, NCC के, विभिन्न क्षेत्र से, समाज से, गाँव से, विभिन्न जो गाँव के अंतिम पंक्ति के युवा है, उनको भी हम लोग यहाँ लाकर प्रशिक्षण देते हैं, ताकि गांव में कोई भी आपदा हो, ऐसा समस्या हो, तो हम लोग का युवा, जब तक वहां से विभागीय लोग आवे, लेकिन वहां का हमारा युवा जो है प्रशिक्षित है और वहां संभाल सके।
1: युवा देश के कर्णधार कहे जाते हैं, क्या कहिएगा आप, किस तरह से एक संदेश देना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को?
3: हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश युवा प्रसिद्ध माना जा रहा है, युवा जो भी चाहता है वो परिवर्तन कर सकता है, या तो आज हमारे समाज में युवा अच्छा संदेश दे।
1: क्या हुआ आपका नाम?
4: जी, मैं रवि कुमार प्रधान फ्रॉम KVS कॉलेज उच्चैठ से। यहाँ मैं बेसिकली वॉलंटियर्स में जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे युवा आपदा ट्रेनिंग सेंटर में मैं यहाँ आया हूँ। आज हम लोगों को लिफ्टिंग एंड मूविंग के बारे में, सबसे पहला टॉपिक हमारा लिफ्टिंग एंड मूविंग। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं, जब कोई बाढ़ आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, बाढ़, फायर या फिर अर्थक्वेक, उसमें जब वो एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो उन लोगों को हम किस तरह से लिफ्ट करके उन लोगों को हम सही जगह पर ले जा सकें, और उन लोगों को जैसे हॉस्पिटल में जैसे हम लोग भर्ती करवाते हैं, अगर कोई व्यक्ति जैसे भूकंप आया, अर्थक्वेक आई, और वो किसी मलबे के अंदर दबे हुए, तो उन्हें हमें लिफ्ट किस तरह से करनी है, उसके बारे में आज हम लोगों ने जाना।
1: अच्छा, आपने सीख लिया, आप जो है पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, जब इस तरह की आपदा आएगी तो आप अपने काम को छोड़ के कैसे जाइएगा वहाँ पर?
4: जैसे कि अभी हमने सीखा है, पढ़ाई में बाधित होना ये कोई बात नहीं है। पढ़ाई में बाधित क्यों, ये भी पढ़ाई का ही एक हिस्सा और दिनचर्या का भी हिस्सा। अगर हम अब खुद से जागरूक करते हैं दूसरे को, तो हमारा मतलब जो भी हमारे सीनियर्स है, हमारे जूनियर सीनियर को नहीं कर रहे हैं सीनियर, वो भी हमसे तो मोटिवेट होंगे, वो देखेंगे कि हमारे आकर के बाढ़ ग्रसित लोगों को मदद कर रहे हैं, संभाल रहे, वो अपना एजुकेशन छोड़ के आ रहे हैं।
1: आप अपने परिवेश, आपके
4: प्राप्त एक फील कर लोगों का मदद, आप एक सडन में अंदर ला सकते
5: दिन के ट्रेनिंग पे आई हूँ, और यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा 4-5 क्लास हुआ है, जिसमें लिविंग

मूविंग के बारे में है, ये दो तरीके का होता है, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी। और इसमें जो सिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, और मैं चाहती हूँ आगे भी आने वाले टाइम पे जहाँ जहाँ

0: क्योंकि उससे मेरी भी पढ़ाई स्ट्रांग होती है।
1: तो आपके जो दैनिक कार्य हैं या आपकी जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके इतर यदि कहीं कोई आपदा की यदि बात आती है, आपको वहां पर जाना होता है, तो आपके अपने कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
0: जी सर, ये आपदा की घड़ी है, हमें इंसान होने के नाते अपने दिल में इतनी संभावना लोगों के लिए होनी चाहिए कि कोई अगर कष्ट में है तो उनकी मदद के लिए हम हमेशा अक्सर रहें। और हमारे आज कहीं और हो रहा है, कल हमारे घर में हो सकता है, हमारे क्षेत्र में हो सकता है, तो हमें, हम युवा हैं और हमें इस चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। सर,
1: आपका क्या नाम हुआ?
2: मेरा नाम नंदन कुमार पासवान हुआ, मैं BSJ कॉलेज का छात्र हूँ। हम नागरिकों को बहुत ही अच्छा से मदद कर सकते हैं, जैसे हम जाने रहेंगे कि बाढ़ आने पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, कैसे लोगों को बचाना है।
1: हाँ, और तैरना आता है?
2: हाँ, मुझे तैरना आता है, मैं तैर के बचा भी सकता हूँ लोगों को।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए संकलन और वाचन दीपक कुमार झा का था और प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। नमस्कार।
4: ये था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन वाचन दीपक कुमार झा की, प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा की। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरह अपने दायित्व की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे युवाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बताया कि हमें किस तरह अपनी तैयारियां करते रहना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
5: काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
5: काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक मैथिली गीत।

अभी आप सुन रहे थे कुमकुम झा के स्वर में लोकगीत। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को ये लोकगीत बिल्कुल पसंद आया होगा। हम बातें कर रहे थे कि युवाओं को किस तरह से अपने आगे के कामों के प्रति एक रूटीन बना के आगे बढ़ते रहना चाहिए, युवाओं को किस तरह नई नई सीख के लिए नई नई चीज़ों का के ईजाद के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ कदम में कदम मिलाकर हम युवा चल तो रहे हैं ज़रूर, साथ ही साथ हम अपने आप का, अपने समाज का, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम कोशिश करें कि हम उन चीज़ों के बारे में खंडित करें, अपने जो जीवन स्टाइल है, जो हमारा दिनचर्या है, उसको हम किस तरह आगे लेकर चलें। हम कोशिश करें कि हमारा जो समाज है वो समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, जो जो चीज़ समाज में सही गलत क्या है, उस पर हम विचार विमर्श करें, अपने से बड़ों के साथ बैठ कर इस पर विचार विमर्श करें, ये ज़रूरी है। युवाओं को ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके साथ रह लें वो हमारे उम्र का ही हो, हमसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, हमसे उम्र में छोटा भी हो सकता है। कहा जाता है कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हम कभी भी उम्र नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारा दोस्त है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो, हमारे ज़रूरी नहीं है कि वो हर वो बात हमारे भले के लिए ही करे। जो हमारा अपना आदमी होगा, अपना इंसान होगा, मिलने जुलने वाला होगा, जो हमसे क्लोज़ होगा, वो आपकी हर बात पे कभी गुस्सा हो सकता है, कभी आपको समझा सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। कभी आप गुस्से में होंगे तो वो आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करेगा, कभी ऐसा होगा कि आप गुस्से में होंगे तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो जो दोस्ती का एक रिश्ता होता है, जो हमारे जो सर्कल है, जो हमारा समाज है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह के होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है।

जो किसी भी उम्र में किसी से भी कभी भी हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम जो जिन चीज़ों को कर रहे हैं उन चीज़ों पर जो हमारे मिलने जुले वाले लोग हैं वो हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कितना मदद कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को एक सच्चे लगन के साथ, सच्चे निष्ठा के साथ, सच्चे मन से करते रहना चाहिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये कोशिश करते रहना चाहिए कि समाज को उससे फ़ायदा हो सके। हमारे परिवार को जो फ़ायदा होता है वो होता ही होता है। हम किसी भी काम को करते हैं तो जाहिर है वो आर्थिक लाभ के लिए ही करते हैं, उस लाभ में हमारे समाज का भी फ़ायदा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमें बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत है। और घड़ी की सुई बिल्कुल इशारा कर रही है कि समय है युवाओं से इजाज़त लेने का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं से इजाज़त लेने से पहले थोड़ा सा उनको एक और लोकगीत की तरफ ले चलते हैं।

लक्ष्मी कुमारी के गाए इसी लोकगीत के साथ अब युवाणी कार्यक्रम थोड़ा अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। बस यूं ही अपना ख्याल रखते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर। और हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें सफलता नहीं भी मिलती हो, फिर भी हम उस काम में लगे रहें, एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। एक बार नहीं हो सकता है तो बार बार कोशिश करते रहने से और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस वादे के साथ कि अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, दीजिए आज्ञा।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब वक्त हो चुका है कुछ गानों का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

क्षमा करेंगे। आकाशवाणी दरभंगा से अभी फिल्म संगीत जारी है, आपको सुनवाते हैं अगला गाना।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य

0: मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के दो मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी चार मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

विद्यापति गीत का कार्यक्रम होगा 6:10। मैथिली संवाद आप सुनेंगे पटना केंद्र से 6:25 पर। गाम घर का समय होगा 6:30 पर। आज का चर्चा है विश्व युवा दिवस, साथ ही साथ आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल।

खेती गृहस्थी का समय होगा 7 बजे। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे 7:50 पर। 8 बजे आप सुनेंगे सांसद समीक्षा। सिंगरहार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे लोक माधुरी। रात 10:30 आप सुनेंगे गीतों के रंग। सुबह 5:55 पर आप सुनेंगे कृषि चर्चा। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। 6:40 पर रामचरित मानस ज्ञान। नमस्कार मिथिला का समय होगा 7:05 पर। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे 9:50 पर और 10:30 से।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

0: बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: श्रोताओं, आप आपको सुनवाते हैं विद्यापति गीत।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे काशीनाथ झा किरण और सियाराम तिवारी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। प्रदेश मे हर घर तिरंगा अभियानक अंतर्गत देशभक्ति आ राष्ट्रीय गौरवक भावना सँ जुड़ल कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि। स्कूल, सरकारी विभाग आ सामाजिक संगठन सभक सक्रिय भागीदारी सँ तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली आ सामूहिक वंदे मातरम गायन एहन कार्यक्रम भऽ रहल अछि। आइ सभ जिला मुख्यालय मे तिरंगा यात्रा निकालल गेल। एहि मे पैघ संख्या में सरकारी अधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चा, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक सब के संगहि आम लोक सब सम्मिलित भेलाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता में आई राज्य मंत्रिमंडलक बैसक भेल। एहि मे राज्य सरकार 7 निश्चय 3 अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2030-31 धरि

0: विस्तारित कऽ देल गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता मे राज्य मंत्री परिषदक बैसक मे एहि आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल। एहि योजना लेल 430 करोड़ टाकाक राशि स्वीकृत कयल गेल अछि। केंद्र सरकार 10 आ 20 टाकाक प्लास्टिक बैंक नोट सभक फील्ड ट्रायल के स्वीकृति देलक अछि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा मे एक प्रश्नक लिखित उत्तर मे ई जनतब देलनि। ओ जनौलनि जे प्लास्टिक नोट कागजक नोटक संग जारी कयल जायत। केंद्र सरकार जनौलक जे साइबर अपराध पर अंकुश लगेबाक लेल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एहि वर्ष 30 जून धरि 3,718 अवैध मोबाइल एप्लीकेशन के ब्लॉक कयलक अछि। एहि मे फर्जी लोन ऐप सहित गैर कानूनी गतिविधि मे उपयोग होमय वला ऐप सम्मिलित अछि। लोकसभा मे एक प्रश्नक लिखित उत्तर मे गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार एहि बातक जनतब देलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे 15 अगस्त सँ सरकारी स्कूलक विद्यार्थी सभ लेल ऑनलाइनक पढ़ाई के सुविधा शुरू होयत। एहि सँ विद्यार्थी सभक स्कूलक बाद राति 11 बजे धरि विशेषज्ञ शिक्षक सभ सँ पढ़ाई कऽ सकताह। श्री चौधरी आइ पटना मे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एकटा कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह। मुख्यमंत्री जनौलनि जे सभ साल राज्यक लगभग 100 भाषाली बच्चा सभ के उच्च शिक्षा लेल विदेश पठेबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। ओ कहलनि जे एहि पहलक उद्देश्य विद्यार्थी सभ के नीक शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करायब आ डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा देब अछि। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव कहलनि जे मंत्रिमंडल सँ स्वीकृति भेटलाक बाद सकरी आ रैयाम चीनी मिल सभ शीघ्रहि चालू होयत। श्री यादव आइ पटना मे संवाददाता सम्मेलन मे विभागीय उपलब्धि सभक जनतब दऽ रहल छलाह। संवाददाता सम्मेलन मे विभागीय सचिव धर्मेन्द्र सिंह जनौलनि जे प्रदेश मे चालू वित्तीय वर्षक रबी मौसम सँ प्रधानमंत्री फसिल बीमा योजना लागू कयल जायत। बिहार सरकारक पशुपालन निदेशालय आ द गोट ट्रस्टक मध्य बकरी पालन के बढ़ावा देबा लेल आइ पटना मे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयल गेल। समझौताक उद्देश्य बकरी पालन पालक सभ के वैज्ञानिक बकरी पालन, नीक पशु स्वास्थ्य आ प्रबंधन प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन आ संगठित बाजार व्यवस्था सँ जोड़ब अछि। जदयू सांसद सब आइ दिल्ली मे पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सब भेंट कयलनि। एहि दरमियान बिहारक विकास सँ जुड़ल महत्वपूर्ण मुद्दा सब आ संसदीय क्षेत्र सब मे चलि रहल विकास काज सब पर विस्तृत चर्चा कयल गेल। सहरसा मानसी रेलखंड पर सिमरी बख्तियारपुरक लग पास मे आइ भोर पूर्णिया कोर्ट सँ हटिया जा रहल कोसी एक्सप्रेसक एकटा एसी कोच मे आगि लागि गेल। एकर सूचना भेटतहि ट्रेनक सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर रोकल गेल। रेलवे कर्मी सभ आ दमकलक टीम लगभग आधा घंटाक बाद आगि पर नियंत्रण पौलक। घटना मे कोनो यात्रीक दुर्घटनाग्रस्त होयबाक सूचना नहि अछि। मॉनसूनक कमजोर पड़ला सँ प्रदेश मे बरखाक गतिविधि मे कमी आयल अछि। मौसम पूर्वानुमान मे जनाओल गेल जे आइ राज्यक दक्षिणी भाग मे किछु ठाम अन्हर बिहाड़ि संग वज्रपातक संभावना अछि। ओतहि किछु भाग मे हल्का बरखा सेहो भऽ सकैत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: घर आंगन कार्यक्रम में हमार आधी आबादी बहन लोकन के कार्यक्रम में स्वागत छन आ संगे नमस्कार छन। मोनी बहन आई तो बुझले गप आई बुध दिन है आ बुध दिन अपना सब आने छी अपन सबके कार्यक्रम बहन लोकन के कार्यक्रम घर आंगन।
1: ये लाल बहन यह बुध के तो बाट जोहने रहे छथिन अपन जे बहन सब छथिन जे कहिया ई दुनू बहन एती बुध दिन घर अंगना ल के जे घर अंगना में बैस के बहुत रास गप सप करब।
0: आ एखन तो घर आंगन में बड़ रमन चमन सेहो होइया ने मोनी बहन। आ बहन सब तो अपस्यांत रहे छथि भोर से ल के सांझ तक काज से खास कर जे घर में जे माने नव जे बहन के जे नव विवाहिता छथिन जे घर में उनका घर में तो देखते छे मधुश्रावणी पावन जे चल रहल है त भरि दिन तो सब एकदम व्यस्त रहे छथि काज में।
1: लाल बहन काज में व्यस्तता के गप तो बुझलो मुदा मोन अछि ने अपना सब के जे पावन पूजे छलो है त कतेक पानि होइ छले एकदम झड़झड़ाइत रहे छले मेघ ठनकैत रहे छले मुदा अखन के समय देखू जे कतेक बदल गेल अछि एकरा की कहब एक ठोप कतौ पानि नहि बरसैत अछि एते कड़ा रौद रहैए जे पबनैतिन सबके तऽ मोन अपसियात रहै छै पूजा पाठ करिते करिते दू बाजि जाइ छै फेर साँझमे फूल लोढ़ल जेती तऽ कथी लए कनिको पानि हेतै एकदम गर्मी
0: ओहि रौदे में जाय पड़े छन। आ मान लिया साँझ 7 बजे के बाद जेती तऽ अन्हार में तऽ फूलो नहि ने देखाइ पड़त आ अन्हार में साँझ जेबाको नहि चाहिए कनि लोग दिने देखार जाइए गीतनाद होइए तऽ अहाँ ठीके कहलहुँ। आब देखियौ ई तऽ ठीके छै केहन मतलब बदलाव आबि गेलै
1: समय के एकर तऽ कारण तऽ अपने सब छी एकर जतेक गाछ कटाइ यऽ तऽ पर्यावरण के जे कतौ ने कतौ
0: हमहूँ सब दोषी छी
1: तऽ ओ परिवर्तन तऽ हेबे करत मुदा ई बदलाव जे अछि अपना सबके
0: आनाय रोकऽ पड़त
1: आ अपने आप के ओहि हिसाब से ओरिया के राखू तैयार कऽ के राखू जे सब जगह अपना सबके समायोजन भऽ जाए गर्मी छै तखनो अपना सबके आदत पड़ि जायत ई नहि जे कनिक रौद भेलै गर्मी भेलै आ ई भदवारि के बोखार तऽ बुझिते छी जँ धियापुता इसकुल से एलखिन पानि पीलखिन निश्चित छै एतेक गर्मी छै जे धियापुता सब मानै नहि छथिन कनि पानि पी लेब ठंडा कि बोखार से त्रस्त भऽ जाइ छी।
0: ये मोनी बहन धियापुता के की कहबै हमहूँ अहाँ जहन कतौ बाहर से अबै छी तऽ होइया कि जे कते जल्दी पानि पी प्यास घर में बैसलो जहन एतेक गर्मी में प्यास छने छने लगैए तऽ बाहर से जहन एबै तऽ स्वाभाविके छै लगबे करत में धियापुता के की कहबै ओ सब नहि बुझै छथि तऽ पी लै छथि हम अहाँ बुझै छी तऽ दम कसने रहै छी
1: एकदम तऽ अपने अपन स्वास्थ्य के तऽ ठीक से रखनाइ अपन जे पारिवारिक सदस्य सब छथिन हुनकर सबके स्वास्थ्य के ठीक से रखनाइ ई तऽ अपना सबक काज सबसे पहिल काज होइत अछि लाल बहन। आ आइ जे 12 अगस्त अछि एकटा विशेष दिन सेहो अछि।
0: हाँ बुझलहुँ आइ विश्व युवा दिवस अछि मोनी बहिन तऽ अजुका दिन तऽ कहलहुँ बड़ महत्वपूर्ण अछि आ युवा लोकनि के जागरूक करबाक दिन अछि ने किया तऽ युवा लोकनि से युवा लोकनिमे तऽ बहुत रास ऊर्जा छनि बहुत प्रतिभा छनि लेकिन हुनका में धैर्य के कनि कमी छनि ने किया तऽ ओ तुरंत में अधैर्य भऽ जाइ छथि जे हमरा मने जे सोचै छथि जे हमरा बहुत रास हुनका जिम्मेवारी छनि
1: तऽ
0: मानै छियनि लेकिन धैर्य धऽ कऽ सब जिम्मेवारी के निर्वहन करबाक चाही एहि लए अकतेबाक नहि चाही
1: एकदम। धियापुता सब एतेक ज्यादा उत्साहित रहै छथिन ये ई जे युवा वर्ग छथिन जे ओ उत्साह में किछु नीक बेजाय नहि बुझता जो हुनका अगर नहि समझायल जाय नहि रोकल जाय जे नहि थमू कनि थमि कऽ करू कोनो काज तऽ उगता जाइ छथि ओ सब। तऽ आइ जे अपना सब विश्व युवा दिवस मना रहल छी ने युवा वर्ग के लेल जे हुनकर सबके जे प्रतिभा अछि हुनका और बढ़िआँ बाट भेटनि खूब बढ़िआँ हुनका सबके रोजगार भेटनि ओ सब जे योग्य छथिन
0: ओहि अनुसारे भेटनि। आ जे युवा जे काज करै छथि से मन सँ करै छथि शिक्षे जिनका जे शिक्षा लेने छथि तऽ ओहिमे ओ मन सब करै छथि तऽ हुनका होइ छनि ओहि अनुसारे हमरा ओकर रोजगार भेटै आ ओहिमे जे नहि भेटै छनि तऽ तनावमे आबि जाइ छथि।
1: तऽ अपन जे युवा सब छथिन हुनकर सबके गरिमा अवसर के सार्थक भागीदारी आ सम्मानजनक जे काज छै आ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ई सब भविष्य हुनका सबके नीक रहै एहि के ताक में तो सब रहते छथि लाल बहिन।
0: ओना तो युवा सब अपन से निवास स्थान के आधार पर अलग अलग परिस्थिति के सामना करै छथि तखनो आजू कतेको समस्या से ओ सब त्रस्त रहै छथि। अहाँ ठीके कहलहुँ मोनी बहिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच सम्मानजनक रोजगार में बाधा असमान डिजिटल कनेक्टिविटी जलवायु परिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता सबसँ विश्वभरि में लाखों युवा से प्रभावित होइत छथि।
1: तऽ ई जे डिजिटल कनेक्टिविटी अछि ओ सब पूरा दुनिया भरि के एक दोसर से जे कनेक्ट अपना सब रहै छै जुड़ल रहै
0: छै
1: इंटरनेट के माध्यम से आ ई जुड़ाव जे छै

0: नीक गुणवत्तापूर्ण जे अछि ओतय पहुँचैन हुनकर सबके, खूब नीकसँ ओसभ बढ़िआँ
1: काज करैत, जाहिसँ कि हँ
0: जाहिसँ कि अपन सबके बढ़िआँ काज कऽ कऽ ई वैश्विक एकजुटताके जे छै
1: जोड़ैए।
0: तऽ एहि जे 2026 अछि विश्व युवा दिवसके थीम, एहि गप पर जोर दैत अछि कि विभिन्न अनेको परिस्थितिके चिन्ह कऽ वैश्विक एकजुटताके कमजोर कऽ के बदलेमे एकरा मजबूत करबाके चाही, सबको एकजुट भऽ कऽ काज करी, केहनो परिस्थिति रहै।

0: के अछि विश्व युवा दिवस के थीम एहि गप पर जोर दैत अछि कि विभिन्न अनेको परिस्थिति के चिन्ह क वैश्विक एकजुटता के कमजोर क दे के बदले में एकरा मजबूत करबा के चाही, सबको एकजुट भऽ क काज करी, केहनो परिस्थिति रहे परिस्थिति के चिन्ह क सबको एकठाम भऽ क काज करी,
1: एकते में बल छे कहलो गेले है।
0: तो यह थीम के संगे अपना सब एहि बेर का विश्व युवा दिवस मना रहल छी।
1: कहबे के नहीं ना, युवा लोकन के धैर्य थ क अगर करता तो सब काज निश्चित रूप से बढ़िया हेतन। आ देखियो मोनी बहन, बहुत रास अपना सब के गप से भी कर, मुदा अपने किस संदेश है विज्ञापन वो सुन ले छी पहिने।
0: बेस तो सुनित छी।
2: तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: तो लाल बहन, अखन जो साँझ में अलौं हैं, बुझलों जो कनी मेघ रहते हैं, कनी को टिपिर टिपिर पानि होते रहते हैं, फूल लोढ़े वाली सबके कते सुहनगर लागे छे न।
1: लेकिन तो वो तो देखबे करे छे किया रौद होते, आ हम ही अहाँ जो अलौं हैं तो देखल बाट में केहन रौद टहाटही छा, बुझा नहीं छा जो उम्हर ताकल जाइए भगवान दिस, एहन रौद सब गोटा के बच के गर्मी में सेहो राखी।
0: अपन सब के संस्कृति के जे पावन अछि जे अपन बहिन सब अखनो निभाहित छथि
1: निष्ठापूर्वक,
0: तो हुनका सब के एक लेल तो धन्यवाद करे छी जे फूल लोढ़े ला रोज सजेबे करती, कतबो थाकल रहती मुदा पावन अछि तो ओकरा नीक से करबे करती पूजित छथि, तो किएक ने एकटा
1: इहे बेरो अछि तो सुनवा दै छी अपन श्रोता लोकनि के।
0: सुनित छी।

0: एकदम विभा सिन्हा के गाओल गीत एहने समय आ अपन जे गौरी सब छथिन से फूल ओढ़े ले जाय छथिन संग में सहेली सब सखी सब सब मिल कर
1: बेरो उत्तम इहे बेर अछि त जेहने बेर ओहने गीत आशा करै छी हमर श्रोता लोकन के खूब निक लागल हेतन ने। आ गीतो कखन निक लागै छै एक त पावन तिहार आ मन स्वस्थ रहे पहिने हम कहने छलौं हैं त सब बहिन सब पावन पूजे छथि सब स्वस्थ रहथि प्रसन्न रहथि तखने आनंद के अनुभूत होइ छै सबके। ओहिमे जे कोई बीमार भऽ गेलथि मन खराब भऽ गेलनि तऽ काजो एतबे करी जे सम्हरै किया तऽ गर्मीके देखैत अपन स्वास्थ्यके रक्षा करैत समय पर बेर पर सब काज कऽ ली
0: एकदम समय से जलखै आब जे फलहार करै छथिन से फलहार कऽ कऽ पूजा पाठ छै तऽ आब पेट में जे कनिको फलहार नहि रहतै तऽ फिर केना ओतेक देर
1: कनि सवेरे भिनसरे कऽ लेब किया अबेर करब जहन बुझल अछि सब दिन तक कनि ओहि हिसाबसँ अपन बहिन से काजके अपन समेट लेथि तऽ बेर पर सब काजो भऽ जाइ छै आ मोनो
0: बेरके गप केनो लाल बहिन समय के तऽ समय आइ बुध दिन अछि आ बुधके प्रायोजित कार्यक्रम सेहो सुनित छी अपना
1: सब बेर भऽ गेलै तऽ आब हमसब अपन श्रोता लोकके सुनवा दै छियनि प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
2: प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट
3: पैरामेडिकल है पारस। इसके एक और एपिसोड के साथ राजेश आप सबों के घर आंगन में आ गया बातें करने युवा साथियों से उनके माता पिता से छोटे छोटे भाई बहनों से जिन्हें कल इंटरमीडिएट पास करना है फिर अपने करियर के बारे में सोचना है। जी हाँ हम बातें करते हैं इस कार्यक्रम में कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ सेक्टर में आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं निजी क्षेत्र में भी जा सकते हैं यानी प्रचुरता ही प्रचुरता है बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे अच्छे से जी हाँ लगन से आपने पढ़ाई की होगी और सब्जेक्ट्स को समझते होंगे क्योंकि आमतौर पर अभी ऐसा देखा जा रहा है इस क्षेत्र में जितनी वैकेंसीज आती हैं एप्लीकेंट जो है ना उम्मीदवार उससे करीब करीब थोड़ा कम ही रहते हैं। वैसी स्थिति में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो नौकरी मिलना अच्छा हो सकता है आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है और जो पढ़ेगा वो तो जीतेगा ही ये शर्तिया है और जो अपने मन के अनुसार

0: करेगा, टेक्निकल पढ़ाई करेगा, विशेषज्ञता हासिल करेगा, वो तो निश्चित ही जीतेगा करियर में और रोजगार भी मिलेगा। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हाँ, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के बस स्टैंड रोड, अब पुराना बस स्टैंड हो गया है लेकिन चक्कनपुर पुलिस स्टेशन यही है, उसके ठीक सामने ये संस्थान है। श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है, इसी ग्रुप का ये संस्थान है। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर आपके पास करियर से रिलेटेड कोई सवाल है या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हाँ, तो आप इस पर जानकारियां ले सकते हैं। नंबर मैं बता रहा हूं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, हाँ, डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत होगी और उनसे आप सारे समाधान ले सकते हैं। नंबर नोट करें, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं, अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं। डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी लेना आपका, हाँ, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आप एक सफल इंसान होने चाहिए। और अगर जो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर ली, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग, या इसी तरीके से और भी कोई कोर्स कर लिया आपने, फिजियोथेरेपी में मसलन कर लिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपने मसलन कर लिया, तो आपको सेवा का मौका भी मिलेगा, साथ में नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलेगा। नंबर एक बार फिर, जो बहुत कॉमन है, आपको बता दें, 9155558888, 9155558888। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी को हम बुलाएं, उससे पहले एक दो बातें और कर लेना चाहते हैं। वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और सफल भी हुए, हाँ, नीट में उनका रोल नंबर भी आया, लेकिन किसी कारण से सरकारी कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं जा सकते अर्थाभाव के कारण, राजेश भी नहीं जा सकता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो उनसे कहते हैं कि रास्ते बंद नहीं हो जाते, रास्ते खुल जाते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में ही जाना चाहते थे ना, आप हेल्थ सेक्टर में ही जाइए और इसी नंबर पर 9155558888 या 9162413233 इस नंबर पर बात कर लीजिए। जहां तक पैसे की समस्या है, तो बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिस पर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे मिलते हैं, 4 लाख रुपए तक आप वो लोन लेकर और बहुत ही कम ब्याज पर चुकाना पड़ता है, वो भी शायद, हाँ, हमें जहाँ तक पता है, नौकरी मिलने के बाद, तो उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए आज कुछ जानकारियां लेते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से और आपके रास्ते, आपके सोचने के रास्ते को और आसान करते हैं, आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, किस मुद्दे पर बात करनी है?
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, हाँ, बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
0: जानकारियों का अभाव है, हाँ,
1: भी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी,
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं, ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट

0: होता है, आसपास होता है, ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
2: कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए लगातार। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए जो किए हैं खास करके, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप बात कर सकते हैं, नंबर है 9155558888 और 9162413233। जी हाँ, इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से।
1: एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
1: तो
0: नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक कि और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी निश्चित रूप से युवा साथियों को थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी,
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जो आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना

0: पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है,
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हम हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये जानकारियां हमने सिर्फ दिलवाई कि आपको चुनने में, करियर चुनने में, कोर्सेज चुनने में आपको मदद की जा सके। आप फिजियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी, आप फिजियोथेरेपी, हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बीएससी नर्सिंग या पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करके अपने लिए एक मुकम्मल जहान प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे में हमारी ये बातें आपके लिए शायद मददगार होंगी। आते आते वर्षों गुजर गए, 10 साल से ज़्यादा हो गया इस प्रोग्राम को सुनकर बहुतों ने ये कोर्स ऑप्ट किया और आज अपने करियर में ऊंचाइयों पर हैं। हम बार बार कहते हैं जो जो पढ़ेगा, खास करके टेक्निकल पढ़ाई करेगा, वो जीतेगा ही, जीतना निश्चित है, ऐसा हम समझते हैं। आगे उसकी पढ़ाई और वो जाने। बहरहाल अधिक जानकारियां चाहिए तो 9162413233 ये नंबर है, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से। थैंक यू कहते हैं श्रीराज ग्रुप को, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस लेकर आने का मौका दिया। अगर कुछ छूट गया होगा तो एक कार्यक्रम रोजगार भी है, आप सुन सकते हैं रविवार के दिन। फिलहाल राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: तो लाल बहन अखन अपना सब सुने चलू है कार्यक्रम घर आंगन में प्रायोजित कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस। आब अपना सबके जो बहन सबके लिए कार्यक्रम लोग आयल छी घर आंगन ओहो समेटवाक तो लक्ष्या गेल अछि बेट।
4: हाँ, लेकिन एहिसँ पहिने कहऽ चाहै छियनि अपन श्रोता लोकनि के जे ई पारा मेडिकल है पारा सुनै छथि तऽ एहिसँ जिनका जै चीज मे रुचि होनि ओहिमे ओ पढ़ि कऽ ओहिमे जाथि, आ कोनो मन के मतलब ई नहि छै बुझेबाक छै, जै मे रुचि हुए ओहिमे आराम सँ अहाँ पढ़ाई कऽ सकै छी, ओहिमे अपन एडमिशन लऽ सकै छी। तऽ एहि प्राइज कार्यक्रम सँ से जतऽ जेना बुझाओल जाइए तकर लाभ उठाबी।
3: एकदम आब इएह समेटैत आब अपना सब कार्यक्रम खेती गृहस्थीमे किसान भाइके स्वागत करै छी।
4: निश्चित रूपसँ स्वागत करै छियनि, आ किसान भाइ देखियौन मोनी बहिन ओतऽ स्वागत योग्य छथि, आ सदैत अपन काजमे